उन लोगों की बहुत सी मशवरतें अच्छी नहीं, हाँ उस शख्स की मशवरत अच्छी हो सकती है जो खैरात या नेक बात या लोगों में सुलह करने को कहे, और जो ऐसे काम अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए करेगा तो हम उसको बड़ा सवाब देंगे।

जो तुमको देखते रहते हैं, अगर अल्लाह की तरफ से तुमको फतह मिले तो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ न थे, और अगर काफिरों को फतह नसीब हो तो उनसे कहते हैं कि क्या हम तुम पर गालिब नहीं थे और तुमको मुसलमानों के हाथ से बचाया नहीं, तो अल्लाह तुम में कयामत के दिन फैसला कर देगा और अल्लाह काफिरों को मोमिनों पर हरगिज़ गलबा नहीं देगा।

0: और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो।
1: والأرض وضعها للأنام
0: और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: उसी ने दो दरिया रवा किए जो आपस में मिलते हैं.
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?
1: ऐ
0: दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और इन बागों के अलावा दो बाग और हैं,

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? दोनों खूब गहरे सब्ज़।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे? इनमें दो चश्मे उबल रहे हैं,

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back. Hit music. On your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

0: This is FM 101.
1: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: क्या कह रही थी तुम? एक बार फिर बोलो।
1: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर। एक दिन, एक घंटा, एक मिनट भी नहीं।

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीरे आज़म ने मानसून की मौसमी सूरत हाल से मौसर अंदाज में निमटने के लिए जामे हिकमत अमली इख्तियार करने की हिदायत की है। नायब वज़ीरे आज़म ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती को मजीद मुस्तहकम बनाने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया है। आज खेलों के सहाफियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ख़वातीन के ICC T20 आलमी क्रिकेट कप का दूसरा सेमीफाइनल आज लंदन में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा।
1: This is FM.
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
3: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान। दिस इज FM 101.
4: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है। मगर अब नहीं, इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
5: Big idea? Check. Passion? Check. The cloud resources to scale? That's where many startups struggle, but not anymore. Ignite, under the Ministry of IT and Telecom, brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 in cloud reimbursement across 2 tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
6: I love FM 101.

0: This is FM
1: 101. ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स AI, SaaS,
0: FinTech,
1: HealthTech। इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
0: This is FM 101.
2: This is the sound of your cloud bill. And this is the sound of it getting reimbursed. Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, HealthTech and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus a one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.

This is FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है
1: और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है।
0: पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स AI, SaaS,
2: FinTech,
0: HealthTech। इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
3: सुनते रहिए FM 101.1।
4: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: Big idea? Check. Passion? Check. The cloud resources to scale? That's where many startups struggle, but not anymore. Ignite under the Ministry of IT and Telecom brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर वन और टियर टू के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
2: This is FM 101.

0: This is the sound of your cloud bill. And this is the sound of it getting reimbursed. Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech, and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus a one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: Big idea? Check. Passion? Check. लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है मगर अब नहीं इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स टियर वन और टियर टू के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है
3: सुनते रहिए FM 101 101 101

0: This is FM 101.
1: This is the sound of your cloud bill. And this is the sound of it getting reimbursed. Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech, and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
2: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
3: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। एआई, सास, फिनटेक, हेल्थ टेक, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
0: दिस इज FM 101।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News.
1: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मानसून की मौसमी सूरतहाल से मौसर अंदाज में निमटने के लिए जामे हिकमत अमली इख्तियार करने की हिदायत की है। नए वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती को मजीद मुस्तहकम बनाने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता माली साल के दौरान अगस्त और मई के दरमियान नौजवान सरमायाकारों की रजिस्ट्रेशन में तेजी से इजाफा देखा गया है। और ख़वातीन की ICC T20 आलमी क्रिकेट कप का दूसरा सेमीफाइनल आज लंदन में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
4: There's music. And then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल लार्ज बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

Coming up next, 101 News Headlines.

to FM 101, a Balay Balay Oshawa Shawa.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: कुंड नाच दे। सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: बाबुले सिरे शुमावे माले

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
2: अजी सुने जरा फसाना प्यार का,

देखिए ड्रामा सीरीज फसाना मार्ट का जुम्मा से इतवार रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: No mind, Cali, summer cum laude.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: This is FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: This is FM 101.
1: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: This is FM 101.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
0: This is FM 101.

0: हमारा विजन ये था कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को अगर रिकग्निशन नहीं मिलेगी तो इस फील्ड के अंदर नौजवान जर्नलिस्ट और नए आने वाले लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन नहीं होगी कि ये फील्ड जिसमें इतनी मेहनत भी करनी पड़ती है, जिसमें फील्ड रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है, जिसमें ट्रैक भी रखना पड़ता है तमाम एक्टिविटीज़ का, तो मुझे खुशी भी है, फ़ख्र भी है शाह साहब के हमारे दौर में आपको तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। और ये ऑनर सिर्फ आपका नहीं है, ये ऑनर पूरे पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का है जो बड़ी मेहनत करते हैं, तगोदौ करते हैं और एक साजगार माहौल बनाते हैं पूरे मुल्क में स्पोर्ट्स को लेके। और मैं आज ये भी कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के फरोग के लिए आप एक कमेटी बनाएं, आज आप जो मुझे तजावीज़ देंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की वेलफेयर के लिए, उनकी बेहतरी के लिए और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को फ़रोग देने के लिए, तो हम उसकी हकूमती सतह पे जो हो सकेगा हम उसके लिए करेंगे। और मैं बताते खुद ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। और इस दफ़ा आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, हमें ये एजाज़ हासिल है कि इस वक्त पीटीवी स्पोर्ट्स पाकिस्तान का वाहिद चैनल है जो फीफा वर्ल्ड कप इस दफ़ा दिखा रहा है। और हमने नौजवानों को एक हिम्मत हौसला देने के लिए और एक हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए इंश्योर किया कि ये पाकिस्तान के तूल अर्ज़ के अंदर ये दिखाया जाए। और मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप मौका भी देते हैं और इज़्ज़त भी बख्शते हैं। और मैं शाकिर अब्बासी साहब खासा इनका फॉलोअप रहा ये तमगे के हवाले से भी, बाकी मामलात के हवाले से भी, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो तजावीज़ आप मुझे देंगे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के फ़रोग के लिए, वो ना सिर्फ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन पर मैं पूरा उतरूँ, बल्कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से आप हमेशा मुझे अपने से एक कदम आगे पाएंगे। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: एग्जीक्यूटिव बॉडी के लोग हैं वो ऊपर आ जाएँ।
0: मैं हल्फ उठाता हूँ कि मैं अपने ओहदे की जिम्मेदारियाँ पूरी दयानतदारी
2: ईमानदारी
0: और गैर जानबदारी के साथ
2: अंजाम दूंगा
0: रिश्ता के आइन और जवाबित की पासदारी करूँ रिश्ता के आइन और जवाबित की पासदारी करूँगा और अपने जाती मफाद पर तंजीम के इज्तमाई मफाद को मुकद्दम रखूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए, आमीन। बहुत मुबारक हो
3: जी। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2026 से ज़ेर-ए-एहतमाम तकरीब, वज़ीर-ए-इत्तला'अत-ओ-नशात अता

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: दिन के 2 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बुरोएकार लाए जाएंगे। वजीर रेलवे ने हिदायत की है कि डिजिटल तब्दीली के जरिए तमाम खिदमात को तेज और इस्तेमाल दोस्त बनाया जाए। उज़्बेकिस्तान के खुद मुख्तार इलाके कराकल पाकिस्तान के वफद और वजीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ शोबों में तआवुन को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया है। पाकिस्तान और कतर के सालिसों ने दोहा में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरात कारों के साथ अलग अलग मुलाकातें मुकम्मल कर ली हैं।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद, The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: back after this short commercial break. Stay with us.
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर वन और टियर टू के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है। बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर वन और टियर टू के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है। बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर वन और टियर टू के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है। बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है। बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। एआई, सास,
3: फिनटेक,
2: हेल्थटेक, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर 13 को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। एआई, सास,
3: फिनटेक,
2: हेल्थटेक, इसके अलावा

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101। सुनते रहिए FM 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: अजी सुने जरा फसाना प्यार का,

0: देखिए ड्रामा सीरीज फसाना मार्ट का जुम्मा से इतवार रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: ऑल राइट जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ की इस दुनिया में जिन समातों से मेरे अल्फाज टकराते हैं यकीन के साथ कि आज के दिन आपने बहुत ही आसान तरीके से मुकम्मल किया होगा। एफ एम 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरापी विद आरजे डॉक्स। मुझे अपने शो का नाम भूल गया था, तो आधा बोलने के बाद मैंने सोचा क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। फिर ये छोटे से लम्हे में मेरे जहन से फीडबैक आया, नहीं तुम ठीक बोल रहे हो। तो वो जो थोड़ी सी वाइब्रेशन आई उसको मैंने महसूस किया। आई डोंट नो आप लोगों ने महसूस किया या नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा महसूस किया। यही वो लम्हा है जिसे कहा जाता है कन्फ्यूजन। और खालिक कायनात ने कितना खूबसूरत सा सिस्टम बना दिया हमारे अंदर कि फौरी तौर पर हमारे अंदर बहुत सारे केमिकल्स हरकत में आते हैं। नर्व्स, आपका सिस्टम, आपके मेमोरीज, आपके खाते खुल जाते हैं और फिर वहाँ से कोई चीज़ निकल के सामने आती है जो आपके मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ को वैलिडेट करती है, या तो कहती है हाँ ठीक है, जो कहा बिल्कुल ठीक कहा उसकी जस्टिफिकेशन आती है, या उसका डिनाइल आता है। और डिनाइल आ जाए तो इंसान बेशरम होकर कहता जा फिर मैं नहीं मानता, और फिर अकड़ जाता है और उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है द कांच चिट्टा, जैसे कि इसका कव्वा जो है सफ़ेद है। और अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं, मोहसिन क्या हाल है तुम्हारा?
1: अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी सुनने वाले हैरवाफिये से होंगे। और सर बड़ा अच्छा लग रहा है तीन हफ्तों के बाद आपके साथ शो करने के लिए।
0: और कहाँ चिट्टा है को अंग्रेजी में क्या कहेंगे?
1: क्रो इज वाइट,
0: वाइट क्रो आजकल बन सकता है, यही बहुत जदीद है।
1: हाँ जी बिल्कुल सही है।
0: एनीवेज जी, तमाम सुनने वालों के लिए, लाहौर से जहाँ तक मेरी आवाज़ सफ़र करती है मुल्तान, और मुल्तान से आगे होती हुई हैदराबाद से कराची जाती है, और फिर यहाँ लाहौर से ट्रेवल करती है ये इस्लामाबाद और पिंडी, यहाँ सियालकोट और तमाम अजला से होती हुई कश्मीर की वादियों में फैल जाती है और गिलगित बल्तिस्तान में जाती है, फिर वहाँ से KPK में भी जाती है, खूबसूरत बुलंद बाला सरसब्ज पहाड़ों से टकराती है। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, तमाम सुनने वालों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से आपके अय्याम गुजरे होंगे। बाकी दुनिया आना जाना सो मामला चलते रहते हैं, और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी मोहब्बतें हैं, प्यार है तमाम तर मेरे फौजी भाइयों के लिए, और जिनकी वजह से हमारा सर फ़ख्र से बुलंद रहता है, और हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी मुसलमान हैं और हम सीना तान के चलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान ने एक और कामयाबी हासिल की कि जहां हमने एक जंग रुकवाई उसमें सालसी का किरदार अदा किया और खुदाए वाहदहू ला शरीक ने सुरखरू किया। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी, और मेरा सलाम अकीदत है मेरा नहीं तमाम सुनने वालों का। और फिर कहते हैं दो बहन भाई होते हैं उनमें भी झगड़ा हो जाता है, तो कहीं पे इख्तलाफ की अगर कैफियत देखें तो परेशान ना हुआ करें, ये होता रहता है चलता रहता है। तो खुदा का शुक्र अदा किया करें, वो लम्हा जो आपको मुयस्सर आया जिसमें आपने सोचा किसी बात को महसूस किया देखा आपके हवास खमसा ने आपको ये काबिलियत दी, और ये काबिलियत उसी खालिक कायनात की अता की हुई है जिसने आपको और मुझे पैदा किया, जिसने मुझे अभी थोड़ी देर पहले कन्फ्यूजन से निकाला, जिसने मुझे अकल दी। और मैं पढ़ रहा था फतूहात मक्किया में, अलामा इब्ने अरबी की बड़ी खूबसूरत सी किताब है, उसमें लिखा कि खालिक कायनात ने जब अकल को पैदा किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खालिक कायनात ने उससे गुफ्तगू की, उसे कहा आ गया, वो आ गया, ही कहा लौट जा, वो लौट गई, कहा बैठ जा, वो बैठ गई, फिर उसे कलाम किया, फिर कहा कि मुझे मेरी ज़ात के जलाल जबरूत की कसम तुझसे ज़्यादा प्यारी मखलूक मैंने पैदा नहीं की।
1: वाह क्या बात।
0: और मैं तमाम तर इंसानों से तेरे ही मयार पर मामलात करूँगा।
1: बेशक
0: वो मामलात ज़िंदगी जिसको जिस हद तक समझ आई उसने उस अंदाज में अपने खालिक को देखा, जाना, पहचाना और उससे मांग लिया।
1: बिल्कुल ठीक।
0: तो इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ, जिंदगी को जिए और अपने खालिक से जो जी में आता है मांगे,
1: मांग लें।
0: वो है जो वो भी अता करता है जिसको मैं नहीं जानता, और वहां से अता करता है जहां से आप और मैं नहीं जानते। और फिर हम कहते हैं उसको मौजजा हुआ, क्योंकि आपकी और मेरी अकल के इदराक से बाहर थी वो चीजें, ना आपने जाना, ना मैंने जाना, ना मैंने सोचा, ना तवक्को थी कि ऐसे भी हो सकता है और वैसे होता है। तो हमारी जबान बेइख्तियार कहती है कि मौजजा। तो खुदा का शुक्र अदा करें, आपका होना मेरा होना किसी मौजजे से कम नहीं।
1: बेशक
0: मैं हूँ, आप हैं, हम हैं, मौजजा है खालिक कायनात ने कल मैं कुन से खल्क किया। ये जज्बात, ये आंखें, ये आंसू, ये हंसना, ये रोना, ये गम और गुस्से का इजहार, ये सीखना आगे बढ़ने का अमल, ये नए नए अल्फाज तराशना, नई नई सिचुएशन बनाना, कभी खराफाती किस्म के आइडियाज़ लेके आना, कभी किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट का सबब बनना, ना जाने और क्या क्या,
1: क्या, क्या?
0: कितने अल्फाज, मगर एक्सप्रेशन वही है। और मैं चाहता हूँ यही होना चाहिए, कुछ करें या ना करें शुक्र अदा करते रहें, हालत शुक्र में रहें। वक्त हो चुका है 10:21। आज है जी जुलाई का महीने की 2 तारीख 2026 का समय। आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी, मैं हूँ आरजे डॉक्स और मेरे साथ हैं
1: आरजे मोहसिन अली।
0: आपका मेरा साथ होगा आज तकरीबन 12 से थोड़ा पहले जाऊंगा, मेरी सिस्टर की सर्जरी है परसों, तो मुझे उसके लिए थोड़े इंतजाम करने, दुआ कीजिएगा। बाकी इंजॉय करें, चिल करें लाइफ को जिस तरह दिल करता है जिए। यार आपको लाइफ मिली ना मैंने दी ना किसी और ने दी, जिस खालिक ने दी उसे जीने के लिए दी, जिस तरह से दिल करता है जिए, लेकिन इस तरह से जिए कि आपकी जात तक हो नफा और नुकसान, नफा चले दूसरों को जाए, नुकसान
1: आप खुद बर्दाश्त करें।
0: सो यू कैन सेंड मी योर मैसेजेस एंड लेट मी नो इफ यू गाइस आर लिसनिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। आई वांट यू टू सेंड मी अ मैसेज, गो टू राइट मैसेज ऑप्शन and just type your name and message and whatever you want to say. Pehle kya lagate hain, 101, don't forget to write 101 space, just type whatever you want, jo bhi likhna chahte hain likhein, aur 4471 par bhej dein. और इसके अलावा मेरी पोस्ट होगी जी FM 101 लाहौर पे सर्च करें और FM 101 चैनल पाकिस्तान पे, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। और अभी थोड़ी देर में मैं लाइव भी आता हूँ RJ_DUX.com। आतिफ एंड समी यूसुफ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कलाम, मस्त कलाम। डोंट गो एनीवेयर, आई विल कैच यू बैक आफ्टर दिस।

0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 10:30 और 2 जुलाई 2026 का सन है। FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, और आपका मेरा साथ होता है बुद्ध जो मेरा रात की शब 10 से 12 बजे तक। आई थिंक वी शुड टर्न इट ऑफ एज वेल। ओके, हाँ जी मोहसिन, काफ़ी छुट्टियां हुई, काफ़ी देर रابطہ नहीं रहा आप लोगों से, और आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम हियर। काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी लंबे अरसे के बाद आई एम हियर। सर आपको कैसा लग रहा है?
1: सर बहुत अच्छा लग रहा है। मुहर्रम में तो वैसे ही ऑफ था, उससे पहले भी एक आप शायद बिजी थे।
0: हाँ मैं था, नहीं लाहौर में नहीं
1: आप
0: था,
1: लाहौर में अवेलेबल नहीं थे।
0: इस्लामाबाद, यस ऑफ कोर्स।
1: मैं यहाँ से होके वापस गया था,
0: तो आप नहीं कर लेना था।
1: नहीं, मेरे ख्याल से वो आगे थे, जिया भैया आगे थे, उन्होंने कर लिया था।
0: आज क्या बात की जाए? What should we talk about?
1: सर अगर तो वो कलर्स पे बात करनी है तो
0: आज कलर्स पे बात नहीं, मोमेंटम में बात करेंगे, वो अगली थर्सडे को करेंगे आई थिंक। अगली जुमेरात को बात की जाए।
1: बिल्कुल ठीक है सर।
0: को होर दसो, मुझे ये बताएं, आप की जिंदगी में बहुत सारी फीलिंग्स आ रही होती हैं, बहुत सारे कोई ओवरवेलमिंग, बहुत ज्यादा हैवी किस्म का इंसिडेंट हुआ हो, एक्साइटमेंट, या कोई लाइफ में कभी कभी ऐसे बैठे बैठे फेज आ रहा होता है जब आप सोचते हैं यार कि वाई कैन नॉट आई रीस्टार्ट माई लाइफ, जिंदगी का सफर दोबारा क्यों नहीं शुरू कर सकते, कभी ऐसा थॉट आता है? सारों को मेरा ख्याल आता
1: आते है सर, सब
0: यार अगर मैं फलां स्टेज पे पहुंच सकूं ना अपनी लाइफ की,
1: ऐसा ही है,
0: तो फिर कितना मजा आए मैं दोबारा से स्टार्ट करूं। मेरे अंदर भी ये थॉट आता है, लेकिन मैं ये सोच रहा होता हूं अगर मैं जाऊं बैक कहीं स्कूल लाइफ, तो अकल यही होनी चाहिए, मतलब अकल का दर्जा यही होना चाहिए, समझ बूझ जितनी होनी चाहिए, फिर कितना मजा आए ना।
1: हाँ, ऐसा ही है सर।
0: फिर क्लास में बैठ के बंदा वो काम
1: वो करे
0: जो किसी ने सोचे भी ना हो। मास्टर भी परेशान हो
1: यार ये क्या कर रहा है,
0: और कहना है कौन है
1: ये, हमें पढ़ाने आ गया।
0: तो लाइफ रीसेट क्या हो सकती है या नहीं हो सकती, लेट्स टॉक अबाउट इट। और अगर लाइफ रीसेट हो सकती है तो कैसे हो सकती है, किस तरह से लाइफ रीसेट हो सकती है? जिंदगी में ना वक्फे आते रहते हैं आपके, बड़े बड़े मुख्तलिफ किस्म के वक्फे आते हैं, वो कैलेंडर में नहीं होते बल्कि आपके अंदर से आ रहे होते हैं। कभी कभी इंसान बातें करना छोड़ देता है, कभी ख्वाब देखना छोड़ देता है, और कभी आप खुद पे यकीन करना छोड़ देते हैं।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: और फिर उन्हीं लम्हात में पता क्या होता है, कभी कोई शख्स, कभी कोई किताब, कोई दुआ, कोई हादसा, या कभी कोई एक सिर्फ एक छोटा सा ख्याल, बहुत छोटा सा, आपके अंदर आता है कि नहीं अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी फिर जिंदगी जी जा सकती है, हम दोबारा से अपनी लाइफ को रीसेट करके रीस्टार्ट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल ठीक।
0: आपको लगता है ऐसे मुमकिन है?
1: सर मुझे लगता है कि
0: जहां पे आप दोबारा जीना सीखते हैं, और अगर सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर आप उस स्टेज पे जाओ ना जहां पे कभी आप बड़े होपलेस हो जाओ और वहां से फिर आगे चलते हो, उस स्टेज पे जहां आप खड़े हो, फील करो कि कुछ भी नहीं है यार, आई एम रियली वेरी मच होपलेस अबाउट एवरीथिंग, और आगे कुछ भी नहीं है आप करने के लिए।
1: आपने जहां गलती की आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं।
0: आप फर्ज करें आपका किसी पे दिल आया,
1: ओके बिल्कुल ठीक,
0: शदीद किस्म का आया,
1: बिल्कुल ठीक,
0: आपने अपनी जिंदगी का महवर बना लिया,
1: बिल्कुल ठीक,
0: और उसके बाद वो शख्स चला गया आपकी जिंदगी से,
1: बिल्कुल ठीक,
0: आपकी जिंदगी एक दफा जमूद का शिकार होती है,
1: बिल्कुल ठीक,
0: होती है कि नहीं होती?
1: होती है, बिल्कुल होती है।
0: और आपको लगता है वो शख्स जिसको आप कहते थे तेरे बगैर तो जिंदगी कोई नहीं, मतलब विदाउट यू आई कैन नॉट सर्वाइव अ सेकंड,
1: बिल्कुल ठीक,
0: उसके बगैर आप जीते हैं?
1: बिल्कुल जीते हैं।
0: आगे बढ़ते हैं?
1: बिल्कुल बढ़ते
0: हैं। नई एक्टिविटीज ढूंढते हैं?
1: बिल्कुल ढूंढते हैं।
0: नई रूटीन तराशते हैं? एक नया इंसान बनता है आपके अंदर से?
1: बिल्कुल बनता है।
0: और किसको कहते हैं रीसेट होना?
1: सर मैं एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात
0: नहीं, अब बच्चा तो नहीं बन सकता ना यार, वो फिल्मा से पहिया घूमता होता है वो इधर पॉसिबल नहीं है कि मतलब उस तरह से पहिया घूमे और आप दोबारा से या मैं दोबारा से बच्चा बन जाऊं और ये चीज़
1: हाँ, यही है ना कि अगर आप
0: आउट ऑफ पॉसिबिलिटी वो अदील भाई भी बाहर बैठे हंस रहे लगता है उन्हें भी कोई कहानी याद आ गई, हाँ यार मुझे भी कभी किसी से मोहब्बत हुई थी फिर वो छोड़ के चली गई, फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं अब नया अदील जाके
1: अब नहीं नया अदील है।
0: थैंक यू वेरी मच मरीना, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग ऑन माय लाइव गलारजे के साथ प्रैंक हुआ, क्या बात है, सही कह रही हैं आप। माजबीन आई हैं, अस्सलाम वालेकुम माजे डॉक्स, वालेकुम अस्सलाम। कल मैं आया रहा, बैठा रहा और ट्रांसमिशन नहीं और बावजह लाइट की अदम दस्तयाबी के नहीं कर पाए। एनीवेज सो मुझे आज आपने गाइड ये करना है, फील ये करना है, अंडरस्टैंड ये करना है कि मैं कहीं फंस चुका हूँ या आप कहीं फंस चुके हैं। अब लाइफ को रीसेट करके दोबारा से आगे बढ़ना है तो किस तरह से बढ़ा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप प्यार और मोहब्बत के ही मारे हों, बहुत सारी और भी वजूहात होती हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस है तो बड़ा सैड था मेरे लिए, तो खैर बहुत ही ट्रामाटाइजिंग था, व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो था। I was entirely a different person. और उनके बाद मुझे एक टाइम लगा खुद को रीसेट करने में, और रीसेट करने के लिए मैं I took a friend of mine, अभी सुन रहा होगा शायद, और उसे मैंने लिया। सर्दियों का मौसम था, -8 टेम्परेचर था कश्मीर में, गाड़ी को सलफ मारा और सीधा हम शारदा कश्मीर पहुंच गए। रास्ते में बड़े लोगों ने हमें रोका लेकिन हमने नहीं रुकना था, नहीं रुके और हम सीधा पहुंच गए कश्मीर। -8 टेम्परेचर, यू वोंट बिलीव, एग्जैजरेट नहीं कर रहा, कोई कहानी नहीं बना रहा, वाकई ही वैली में कोई नहीं था, नोबडी वाज देयर, ओनली टूरिस्ट, मैं और मेरा दोस्त। और वहां से मैं लाइफ को रीसेट करके वापस आया। आपके पास क्या तरीका है अगर आप नहीं जाते? हर बंदे का मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। व्हाट यू थिंक, लाइफ कैन बी रीसेट? अच्छा, मेरा ये कहना हरफे आखिर नहीं है, आप मुझे टोके, मुझे बताएं आप गलत कह रहे हैं, आई विल डेफिनेटली लर्न फ्रॉम यू गाइस। ब्रीना बिलाल कहती हैं, अच्छा माजबीन कहती हैं फिर भी वेट किया, लाइट नहीं थी, थैंक यू वेरी मच मैडम, आदाब अर्ज, आप मुंतजर रहीं। डॉक्स आई थिंक अगर मैं खुद चाहूँ तो मैं अपनी जिंदगी को एक नए मोड़ पे मोड़ दे सकती हूँ, जिंदगी रुकती नहीं है, इंसान बस लम्हों में कैद हो जाता है, ट्रस्ट मी। अच्छा आपकी बात सुन के मुझे याद आया वो फलसफा, पता क्या कहता है इसके बारे में जिंदगी के, जहां पे यहां बात करता है फलसफा, कहता है लाइफ इज जस्ट लाइक अ रिवर, एक बहते हुए दरिया

0: की तरह है, जो लम्हात गुजर जाते हैं उनको वापस नहीं पलटाया जा सकता।
1: बिल्कुल ऐसे
0: इनको वापस आप बिल्कुल नहीं ला सकते, वहीं पे गुजर गए गुजर गए। तो वो जो लम्हात हैं गुजर गए उनको पलटा तो नहीं सकते, लेकिन जो गुजर रहे हैं उनमें रंग
1: लेके आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक,
0: उन्हें नई फील लेके आ सकते हैं। दिस इज व्हाट फलसफा सेज। आयशा सुल्तान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेंटोर, कह रही हैं थैंक यू। हु इज द सेकंड आरजे विद यू टुडेज शो? इन टुडेज शो मोहसिन है, हमारे क्लीग है यहाँ पे, और हाँ हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ है।
1: जी जी,
0: एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट इट। उसमें तकरीबन कुछ 60 तक इनरोलमेंट है, लेकिन 45-50 अभी आ रहे हैं, कुछ लोगों के एग्जाम्स है, होपफुली नेक्स्ट वीक आएंगे। ट्यूसडे एंड वेंसडे को चल रहा है, एंड बड़ा मज़ा आ रहा है जी, आई एम एंजॉइंग इट। एनीवेज यहाँ पे कुछ प्ले करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। हुमैरा फयाज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? मिजाज अच्छे हैं, जेड़ा वेला लंघ जाए चंगा होंदा। कौन सा सुनेंगे मेरे भाई? आज मेरा मूड है नुसरत साहब को चलाने का।
1: ओए होए साहब, कमाल हो गया।
0: हाल मस्की, उनके अंदाजे करम पे वो आना दिल का सुनेंगे?
1: बिल्कुल सर सुनेंगे सर, नुसरत के कोई भी लगा ले हम सुन लेंगे।
0: हाय उनके अंदाजे करम, हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय, कमाल है यार। नसीरुद्दीन नसीर साहब का
1: लिखा हुआ कलाम,
0: लिखा हुआ कलाम, कमाल कमाल। उनके अंदाजे करम उन पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त वो बातें वो जमाना दिल का। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, जिंदगी गुजरी मगर दर्द न जाना दिल का।
1: वाह,
0: कुछ नई बात नहीं हुस्न पे आना दिल का, मशगला है ये निहायत ही पुराना दिल का। ये बात तुम्हारी है मेरी है,
1: दोनों अपने ऊपर ले लेते।
0: वो मोहब्बत की शुरुआत, वो बेता खुशी, देख कर उनको वो फूले न समाना दिल का। दिल लगी, दिल की लगी भन के मिटा देती है, रोग दुश्मन को भी आरब न लगाना दिल का।
1: वाह,
0: उनके अंदाजे करो।

0: नुसरत साहब इज अ फील कंप्लीट पैकेज
1: बेशक,
0: और ऊपर से पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब का लिखा हुआ ये खूबसूरत सा कलाम। आज हम बात कर रहे हैं लाइफ रीसेट की जा सकती है तो कैसे की जा सकती है। आई बी टेकिंग मैसेजेस एंड कॉल्स, ऑफ कोर्स यू कैन सेंड मी मैसेज अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, आपने 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना है और इसको भेज देना 4471 पर। और इसके अलावा यू कैन कॉल मी 04211001 0412111001100101। एंड मेरी लाइव है rj.docs, अगर आप सर्च करेंगे फेसबुक पे मेरी लाइव आपको मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड FM 101 लाहौर एंड FM 101 चैनल पाकिस्तान दोनों जगह आपको पोस्ट में मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। लेसन फ्रॉम लाहौर माला मुगल, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच आयशा सुल्तान, लेट मी रीड योर मैसेज वंस आई एम बैक।

0: By the way, आज का शो खास तौर पे जो लास्ट मैं मरहले में गुफ्तगू करूंगा, जिसको हम अपना सेगमेंट कहते हैं, खास तौर पे जो माएं मुझे सुन रही हैं, बल्कि तमाम तर खवातीन मुझे जो सुन रही हैं, आपके लिए आज बहुत स्पेशल मैसेज है, आप जरूर सुनिएगा इसको। और मैं हमेशा इस चीज के ऊपर मेरा ईमान की हद तक यकीन है कि माँ होने का ताल्लुक औलाद होने से नहीं है। औलाद हो या ना हो, औरत फितरतन माँ होती है, और जो फितरतन माँ ना हो वो औरत नहीं होती। बार कैफ, अगर आप सोशल मीडिया ओपन अप करते हैं तो बहुत सारी ऐसी खबरें आपको देखने को मिलती हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है। फिर एक हादसा भी रिसेंटली पेश आया जिसमें बच्चों के ऊपर छत गिर गई, उससे पहले फिर कुछ क्राइम रिलेटेड न्यूज थी। तो मैं कुछ दिन पहले एक जगह पे मौजूद था, मेरी वहां पे मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि जब भी मैं कहीं पर गुफ्तगू करूं और जो नेक्स्ट स्पीकर है या जो मुझसे पहले वाला स्पीकर है वो अपनी बात कर रहा है, चाहे मैं मेरे से मुताबकत ना भी रखती हो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुताबकत ना भी रखती हो, लेकिन एटलीस्ट वो अपनी बात रिस्पेक्ट के साथ कन्वे करे, और जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो एटलीस्ट उसको सुने ज़रूर। तो एक छोटा सा वाक्या भी पेश आया, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप कहेंगे कि गुस्सा एंड ऑल दैट, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम कर लिया, मुझे इतना गुस्सा नहीं आता है, लेकिन और ख़ास तौर पर अगर ख़वातीन सामने हो तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं आता है, लेकिन कुछ जगहों पर आपको बोलना पड़ता भी है, अगर आप बोले ना तो वो नुकसान इतना ज़्यादा होता है कि फिर वो नुकसान कहीं ना कहीं पर माशरे में तकसीम होकर आप तक वापस भी पहुँच सकता है। तो वो एक इंसिडेंट हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और फिर उसी के ऊपर मैंने पूरा प्रोग्राम आपके लिए आज तैयार किया, पूरा प्रोग्राम तो नहीं, खैर एक सेगमेंट पूरा तैयार किया, आप ज़रूर सुनिएगा, और उसको मैं स्पोर्ट जिस आर्गुमेंट के साथ करूंगा यकीनी तौर पे जब प्रोग्राम एंड होगा, तो कुछ ना कुछ शायद आप लेके ज़रूर उठेंगे इस प्रोग्राम से। मेरी कोशिश, ख्वाहिश ख्वाहिश यही रहती है हमेशा कि कुछ हम प्रोग्राम में ऐसा ज़रूर कर दें कि जब हम प्रोग्राम को साइन आउट करें, हम मुस्कुराएं भी, हम हंसे भी, हम शुगल भी लगाएं, हम जोक भी सुनाएं, हम गाने भी सुन लें, हम कलाम भी सुन लें, हम जिक्र उसकार भी सुन लें, लेकिन जब हम प्रोग्राम छोड़ें, जब मैं यहाँ से अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद करने के बाद आपसे इजाज़त लूँ, तो आप कहें कि यार ये चीज़ जो है वो टेक अवे थी प्रोग्राम की, अगर ऐसा कुछ प्रोग्राम हो तो कुछ बेहतर लगता है। तो आइए जरा सबसे पहले हम कॉल्स भी लेते हैं, अगर हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करें, कहाँ से? हाँ जी ठीक है जी, नाम बताइएगा जरा।
1: मैं आमना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से।
0: आमना, क्या हाल है आमना?
1: मैं ठीक हूँ भाई, मुझे ना अभी मुझे पता था कि आप आएंगे, लेकिन मैंने शो सुना नहीं, पर मैंने कहा आज मैं डायरेक्ट कॉल करूंगी क्योंकि कॉल ही नहीं लगती, और दूसरा ये कि आप मुझे बताएं आपका ड्रामा ऑनर आ गया है कि नहीं।
0: अब तो मेरी बहन आके खत्म भी हो गया, आप तो बहुत ही लेट हैं, आपका साबुन तो बहुत स्लो है, वो तो आके खत्म भी हो गया अब तो, बल्कि मेरे सीन खत्म होने के बाद भी ड्रामा खत्म हो गया, अब तो ड्रामा ही खत्म हो गया है यार।
1: नहीं नहीं भाई, आप मुझे बताएं ना कौन सा, मैं अभी सर्च करके देखूंगी, मैंने मुश्किल से आपको कॉल की।
0: जरूर जरूर, मैं ऑन एयर बता देता हूँ, आप जरूर देख लीजिएगा।
1: नहीं, अच्छा। नहीं नहीं, ऑन एयर नहीं, अभी आप बताएं कॉल।
0: क्यों ऑन एयर नहीं सुन सकते आप? अच्छा मैं बता देता हूँ, ड्रामे का नाम हद है जी, और हम टीवी पे ये ऑन एयर हुआ है, आप यूट्यूब पे जाके हद लिखेंगे हम टीवी पे तो मैं आपको मिल जाऊंगा, और बाकी किस एपिसोड में है वो अब आप ढूंढ लीजिएगा। आई थिंक 31 या 32 एपिसोड में शायद था, मुझे तो याद भी नहीं है, आप यकीन करें मैंने एक्चुअली ड्रामा खुद भी नहीं देखा है, मुझे ड्रामाज में इंटरेस्ट भी नहीं है। अभी मैं रिसेंटली एक ड्रामा देख रहा हूँ, उसकी भी 2 एपिसोड देखी, उसके बाद मुहर्रम आ गया तो फिर नहीं देख सका।
1: या अच्छा शान भैया, मैंने कहा मेरी शादी अब इस्लामाबाद होके आ गई ना, तो अगर हम ऐसा वन वन के स्टूडियो में आए कहीं पे, अगर आपको भी मिल कैसे सकता है बंदा आपको?
0: वेरी नाइस, आपने कहीं इस्लामाबाद में शादी इसलिए तो नहीं की कि कहीं आप मुझसे मिल लें?
1: जी मैंने वन वन की सवाजी से मिलना था।
0: वाह वाह वाह वाह, तो भाई इस वक्त कहाँ पर है जो आपको बिहार के इस्लामाबाद लाए हैं, लेकिन आप तो किसी और ही चक्कर में है, भाई कहाँ है इस वक्त अभी?
1: भाई आर्मी में।
0: वेरी नाइस, भाई जो है वो सरहद की हिफाजत कर रहे हैं पाकिस्तान की, और आप सरहदें फलांग रही हैं अपनी घर की। मैंने कोई ऐसा, ओ खुदा के लिए मेरे ऊपर बिल्कुल ऐसी कोई कहानी ना डालो, मैंने कभी कोई ऐसी तजवीज नहीं दी है किसी को। हाँ वो आपका पता है क्या हिसाब है, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। मैं गया एक इवेंट पे ना, तो वहाँ पे स्टेज के ऊपर एक लड़का था, वो होस्टिंग कर रहा था, तो मेरी अमूमी तौर पर ये कोशिश होती है कि अगर मैं किसी इवेंट पे जाऊँ तो मैं थोड़ा सा पीछे ही रहूँ, उसकी बहुत सारी वजूहत है, बिकॉज यू नो जब आप खुद परफॉर्मर होते हैं या जब आप खुद जाते हैं तो फिर बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं वहाँ पे, नॉट लाइक ओनली कि जो आपको फैंस मिलते हैं, फैंस से हट के बहुत सारे प्रोफेशनल लोग भी मिल जाते हैं ना,
1: कोई तो ऐसी ऐसी भी होगी ना आपके, आप माशाल्लाह हैं भी तो बहुत
0: अच्छा अच्छा तो वो हुआ ये कि खैर वो मेरे साथ चुके दोस्त थे कुछ, तो मैं चला गया थोड़ा सा आगे चला गया। So, हुआ ये कि वो जो होस्टिंग कर रहे थे ना, जो लड़का होस्ट कर रहा था, तो उसने मुझे देखा, तो होस्टिंग के दौरान ही उसने कहा कि अरे मेरे उस्ताद जिशान भाई खड़े हैं और मैंने अपना पहला जो इवेंट होस्ट किया था जिशान भाई के साथ किया था, बड़ी उन्होंने तारीफों के पुल बांधे, सो जेनरस ऑफ हिम, मैं काबिल नहीं इसके, लेकिन बहरहाल उन्होंने बड़ी तारीफ शारीफ कर दी। अच्छा, करने के बाद जब उन्होंने सारी बात कर ली ना, तो उन्होंने कहा आज मैं जितना भी परफॉर्म कर रहा हूँ, जो मैं अभी परफॉर्म कर रहा हूँ वो मैंने जिशान भाई से सीखा है। तो वो जब नीचे आया ना, तो उसने मुझसे पूछा जिशान भाई कैसा था, मैंने कहा यार बहुत अच्छा था, बस एक चीज कभी दोबारा ना कहना कि ये जो तुम कर रहे हो ये तुमने मेरे से सीखा है।
1: नहीं नहीं नहीं
0: शान
1: भाई, आप जो मर्जी कह रहे, लेकिन आपसे बहुत सारे लोगों ने सीखा है।
0: नहीं, सीखा तो होगा, लेकिन
1: लोगों को समझाया भी है अपनी आवाज के थ्रू, ये ना आपने
0: देखो सीखा तो होगा, लेकिन अब ये थोड़ी सीखा है कि अब हस्बैंड आर्मी में हो और आप कहे जी मैं रेडियो मिलने आपको आ रही हूँ।
1: नहीं नहीं अच्छा बहने, अब अपने भाइयों से बात करके ये भी ना पूछे कि
0: बहने बहने बात करे ना, बहने फोन पे बात करे, बहने इंस्टाग्राम पे बात करे, बहने फेसबुक के ऊपर बात करे, बहनों को क्या जरूरत है रात 12:22:58 पे रेडियो पाकिस्तान आ जाए हैं।
1: नहीं इस टाइम तो आ नहीं सकती, मैं कहती कि आप
0: अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि आप चाह रही हैं
1: देख ही ले,
0: यानी कि आप चाह रही हैं कि आप जिस दिन आपका मूड हो आने का मैं जरा 3-4 घंटे पहले आ जाऊँ, ये चाह रही हैं आप। आप रहती कहाँ पे, आप ब्याह करके आई कहाँ पर है, आप पिंडी इस्लामाबाद के कौन से एरिया में आई है, वैसे जरा एक रैंडमली एरिया का नाम बता दें।
1: जिस एरिया में हम आए हैं ना, वो उस एरिया का नाम कुछ क्या नाम है उसका, ये खन्ना पुल तो नहीं
0: होता। अरे अरे अरे अरे अरे, फिर तो आप बहुत करीब है, मतलब करीब से मुराद ये है कि मैं आते हुए भी उस पुल को क्रॉस करके आता हूँ और जाते हुए भी पुल क्रॉस करके जाता हूँ। आप ऐसा करें आप पुल के ऊपर खड़ी हो उसे। वो लोड दी पई है, तो ये ना हो कि किसी दिन फौजी साहब जल्दी आ जाए छुट्टी से और वो कहे तू तैयार नजर आए थे, है ना।
1: नहीं वैसे चांदी सीरियस में कह रही हूँ, अगर मैं सेंटोरस में, आप अगले संडे को सेंटोरस आइए, अगर वहाँ पे अगर आप कहीं मुझे नजर आ जाए, वैसे आप महंगी जगह पे
0: अच्छा
1: जाते वैसे,
0: अच्छा महंगी जगह पे। यार आप लोगों को क्यों लगता है कि मैं, आप लोगों ने कहा मुझे कोई थाईलैंड में किसी यॉट के ऊपर पार्टी करते देख लिया है, या आपने मुझे जो है वो लेक्सस में यू नो बैठ के मैंगोज खाते देख लिया है, या आपने मेरे हाथ में कोई मतलब यू नो कोई ऐसी डायमंड की घड़ी देख ली है कि आपको लग रहा है महंगी सस्ती क्या होता है। और दूसरी बात ये है, बहुत सारे लोग कहते हैं
1: महंगी चीज ये है कि जब जो बंदा सोचता है कि टॉफी खा सकता है और मक्का छीन पी सकता है, वरना अमीर ही होता है।
0: यार ये वैसे बात ठीक है तुम्हारी, तुम्हें पता मैंने अभी आने से पहले भी जो है वो आइस स्पेनिश लाते पी है।
1: इतने मुश्किल तो आप नाम ले थे, मैं तो ये सुन सुन के हैरान रहती हूँ, जरा मैं पता है लोगों के सामने डशी मार देती हूँ आपको सुन सुन के। हाँ, ये वो प्लांट
0: नहीं, लेकिन लोगों को पता चल जाता है, लोगों को पता चल जाता है कि किधर पी होगी इसने, मतलब मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा सो खैर वो मैं तुम्हें बता ही रहा था, बड़े मजे की कोई बात बता रहा था, हाँ कि खन्ना पुल में रहते हो, तो मैं अभी आते हुए भी मैंने खन्ना पुल क्रॉस किया, अभी जाते हुए भी खन्ना पुल क्रॉस करूंगा, ठीक है। तुम ऐसे करो ना, तुम ऐसा करो, तुम खड़ी हो जाओ और हर हर गाड़ी की स्क्रीन पे देखो, क्या पता कहीं तुम्हें तुम्हारा भाई नजर आ जाए। हाँ
1: अच्छा जान भाई, एक और बात जो आप करते हैं ना, तो नहीं मुझे अच्छी लगती इतनी, वो जो नहीं आप गाना गाते कि तेरा इंजदा इस्तकबाल
0: ना तेरा ख्वाब ख्याल उसी है, हाय हाय हाय यार क्या गाना तुमने याद करवा दिया, कहती तेरा इंजदा इस्तकबाल उसी ना तेरा ख्वाब ख्याल उसी। अच्छा यार गाइस बाय द वे मुझे समझ नहीं आती, जो लोग कमेंट साथ साथ कर रहे होते हैं, जरा गपशप लगा रहे होते हैं, एक्टिव रहा करो यार, मैं 12-13 दिन बाद आया हूँ, तुम अभी भी सो रहे हो। खैर एनीवे बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। ये कमेंट्स का कहना सिर्फ इसलिए होता है कि एटलीस्ट जब मैं बात कर रहा होता ना, तो आप लोग बात कर रहे होते हैं, तो मुझे ये अंदाजा हो जाए कि आवाज ठीक जा रही है, गपशप लग रही है या नहीं लग रही है। अदरवाइज अगर ऐसा है तो हम नेक्स्ट टाइम से पिक्चर भी अपलोड नहीं करेंगे, पोस्ट अपलोड नहीं करेंगे, फिर इसका कोई देयर इज नो पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मैं 4471 वाले मैसेजेस शामिल करता ही नहीं हूं, इसलिए कि आप लोगों के कमेंट्स फेसबुक पे इतने होते हैं कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा शामिल कर लें। फिर हम ऐसा कर लेते हैं, अगर आप लोगों का मूड नहीं होता है या आप लोगों को तरद्दुद होता है, तो आपका तरद्दुद बखैर सलामत रहे, हम ऐसा करते हैं कि हम नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम होगा उससे हम पोस्ट अपडेट नहीं करेंगे, हम 4471 वाले मैसेजेस सिर्फ शामिल कर लिया करेंगे, ठीक हो गया? बस गुफ्तगू के दौरान जरा इंटरेक्शन रहे ना, जैसे हम बात कर रहे होते, गपशप कर रहे होते जैसे आप पहले करते हैं, तो उसमें होता ही है कि एटलीस्ट मुझे समझ में आता रहता है कि चले बात पहुंच रही है, वरना मुझे ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं आवाज जा रही है नहीं जा रही है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं।

0: में बिछड़ी कूंज कतारा। अस्सलाम वालेकुम। 0511111001 एंड 9202540। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो नेक्स्ट। हेलो टाइम कम है मुकाबला सकता है। हेलो नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। कॉलर्स तो हमारे पास बहुत है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो अस्सलाम
1: वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जनाब। कौन बात कर रहे हैं कहां से?
1: सर लाहौर शाहबाग से मोहम्मद नवीद की से बात कर रहा
0: हूं। मोहम्मद नवीद साहब कैसे हैं? मैं लाहौर आ रहा हूं, आपको पता।
1: दम खुश थे, हर दम खुश। सर कहां पे आ रहे हैं, किस जगह पे?
0: सर मैं आपके बहुत करीब आ रहा हूं, शादमान के पास ही आ रहा हूं।
1: शादमान के पास आ रहे हैं?
0: शादमान कहां पर है वैसे? वो रेलवे स्टेशन के पास है?
1: इधर ही है सर, ये लिबर्टी वाली साइड पे है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चले लिबर्टी आ जाएंगे। लिबर्टी हम एक दफ़ा गए थे, रश पड़ा था। मुझे असल में ना कुछ चीज़ें लाहौर की बड़ी पसंद हैं, उनमें से सफ़े अवल पे वहाँ के पफ हैं। खैर आप बताएं क्या चल रहा है लाइफ में?
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बड़ा मौला का करम है सर।
0: चले अल्लाह का शुक्र है यार, करम ही रहना चाहिए।
1: मैंने जब आपकी आवाज़ सुनी मैंने कहा मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा मेरा भाई लड़का तो तकरीबन 12-13-14 दिन बाद आए।
0: हाँ तकरीबन 15 दिन हो गए, तकरीबन 15 दिन हो गए
1: जी। मैंने आपको क्या इनके 10वें मुहर्रम के से जो आपका शो था उसी उस दिन ही मैंने कहा चलो शायद मुलाकात हो जाए 8-9 मुहर्रम को। मैंने कहा चलो
0: नहीं यार, असल में हम बस वो अच्छा है कि प्रोग्राम्स नहीं हो रहे होते, लोग बस फर्श अज़ाब पे मसरूफ होते हैं, अच्छी बात है। और
1: तो मैंने पहले जब आपने शादमान का बोला मुझे यही समझ लगी कि मैंने कहा आप कह रहे हैं हम शादबाग में आ रहे हैं आपके पास।
0: अच्छा नहीं नहीं नहीं हम लाहौर आ रहे हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वेरी सून। सो डेफिनेटली जब हम आएंगे तो हम आपको जरूर पता चलेगा। ठीक है, ढोल लेकर आएंगे हम। ठीक है
1: सर, वो तो पता चलेगा लेकिन मुलाकात हो तो सकती है लेकिन मेरे पास सेल फोन बटनों वाला है सर।
0: तो मैंने कौन सा फोन देख के मिलना है आपसे? अच्छा अच्छा आप कह रहे हैं कि आप इंस्टा पे आपको पता नहीं चलेगा। नहीं आप भी फिक्र हो जाए, मैं आने से एक दिन पहले जो है वो रेडियो पे बता के जाऊंगा कि मैं आ रहा हूँ। ठीक है
1: वो तो सर, अब लेकिन आपकी बात तो बिल्कुल राइट है कि आप इंस्टा पे भी आएंगे।
0: फिर एक और काम करते हैं, फिर हम ऐसा करेंगे कि हम किसी दिन लाहौर के स्टूडियो से प्रोग्राम कर लेंगे, तो फिर जब वहां से प्रोग्राम हो रहा हो तो फिर आ जाना वहाँ पे। अब इससे आसान मैं क्या करूँ?
1: हाँ इससे आसान कुछ भी नहीं, ये बड़ा आना जाना है।
0: हाँ बस तुम्हारा आना जाना है ना, बस दुआ करो हमारा भी आना जाना शुरू हो जाए। ठीक है बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग
1: माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं।
0: कोई इसमें कोई शक नहीं
1: है,
0: बस अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। ठीक है चलो खुश रहो, अपना ख्याल रखो। हाँ ओके जी अल्लाह हाफिज। एक कॉल और लेते हैं फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो टी ओके कहता है यार बिना मेरा जीवन कूड़े। ओ बंद करना यार, मैं इतना अच्छा बाबा फ्री सुना रहा था हूँ बच्चों को। अच्छा कहता है कि यार बिना मेरा जीवन कूड़े है। इंग्लैंड आ ले हो, इंग्लैंड आ ले हो, यूएसए आ ले हो, अमेरिका आ ले हो, यूरोप आ ले हो, रोम इटली फ्रांस आ ले हो, ब्रैडफोर्ड आ ले हो, नॉर्थहैम्पटन आ ले हो, साउथहैम्पटन आ ले हो, धूप ठंडियां ठंडियां हवावां लैंड आ ले हो, हाय हाय हाय हाय हाय। ये हाय हाय हाय मैंने इसलिए किया क्योंकि आज से 7 साल पहले हमारा एक रिश्ता आया था दियारे गैर से, 7 समंदर पार से, कनेडा से, कनेडा से, और सब कुछ फाइनलाइज हो सकता था बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से। और अब तक तुम्हारे भाई के पास तो कनेडियन पासपोर्ट होता, लेकिन उस टाइम पे हमें किसी ने कहा कि जी मुल्क को नौजवानों की जरूरत है, हमने कहा लवर ऐ पैरे नौजवान। यार anyway, having said that, अब क्या कर सकते हैं, जिंदगी में होता वही है जो कि होना होता है। वो कहता है कभी खुशी कभी गम, वो भी एकदम। तो क्या कह रहा था? हाँ वो कहता है कि यार बिना मेरा जीवन कूड़े। इंग्लैंड आ लियो, सुड़े है, सुड़े है, सुड़े है, जरा वेला देनिया हो ते पौंड इच देवे आए है। यूएसए आ लियो, यूएसए आ लियो, अगर वेल कराड़ी होवे ते डॉलर इच देवे आए, डॉलर इच। पाकिस्तान आ लियो, तुसी बह जाओ, तुसी बह जाओ, तुसी मेरे को ले लो। कहना है यार बिना मेरा जीवन कूड़े ते मेरा अंदर दर्द हजारा। बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद फरमांदे ने अच्छा, बहुत सारे लोग इनको ना कंफ्यूज करते हैं, मैं आपको ये भी क्लियर करता चलूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे रेडियो शोज पे सुना है, बहुत सारे टीवी चैनल्स पर ये गुफ्तगू होते सुनी है, और मुझे यही होता है कि थोड़ी सी रिसर्च कर ली जाए तो बेहतर होता है। बहुत सारे लोग बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद को कंफ्यूज करते हैं बाबा गुलाम फरीद गंजे शक्कर के साथ, जो कि पाक पतन में तशरीफ फरमा है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो एक बहुत बड़े वलीउल्लाह हैं, बहुत बड़े, बल्कि अगर यूं कहा जाए कि औलिया के शहबाज हैं तो इसमें तो कोई गलत होगा ही नहीं। तो बहुत बड़े वलीउल्लाह हैं बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद, जो कि पाक पतन में आराम फरमा है। लेकिन ये जो आप शायरी सुनते हैं अक्सर सराइकी में, ये बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन में इनकी दरबार मौजूद है, जो कि आप यूं कह लीजिए कि भावलपुर से कोई 100-150 किलोमीटर आगे है। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है, थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए तो मैं सफ़र करूंगा। मैं सफरेश किया करता था, अगर आपको याद हो, बहुत टाइम से नहीं कर पाया हूं, क्योंकि असाइनमेंट्स तब्दील होती रहती है। उस टाइम पर वो असाइनमेंट थी, अब पता नहीं आप मेरी बात को समझ सकेंगे या नहीं समझ सकेंगे। अगर आप तज़फ़्फ़ुफ़ को थोड़ा सा पढ़ें, खैर मैं तो उसकी बिल्कुल अभी 0.00000001% पे भी नहीं हूँ, लेकिन असाइनमेंट्स होती हैं मुख्तलिफ ना, तो कभी वो असाइनमेंट, कभी ये असाइनमेंट, कभी कोई असाइनमेंट, तो उस टाइम उस असाइनमेंट का दौर ज़्यादा था, वो मुतवातर थी, वो ज़्यादा थी, फिर असाइनमेंट तब्दील हुई, चीज़ें साथ साथ चलती हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हम सफरेश को दोबारा शुरू करें, इवन ट्वाइस इन अ मंथ और वंस इन अ मंथ मे बी, और मे बी वंस एंड ट्वाइस इन अ मंथ, यू नो, कि अगर हम एक आध सफर करें 2 महीनों में या 3 महीनों में, सो एटलीस्ट लेट्स डू इट नाउ। सो मैं थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाए तो डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन इट, और मैं जरूर जाऊंगा। तो खैर, बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद फरमांदे ने कि यार बिना मेरा जीवन कूड़े तो मेरे अंदर दर्द हजारा, इंग्लैंड आ लो। हाय हाय हाय, दिस इज 101 इंटरनेशनल। भाई सुने जा रहे हैं हम इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगुजा, साहिवाल, एजे के मरीज, आजाद कश्मीर और पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड में, कनाडा में, टोरंटो में, अरे यूएसए में, शिकागो में, लॉस एंजलिस में, न्यूयॉर्क में, मैरीलैंड में, बाल्टीमोर में।

बस अली भाई बस अली। करता हूँ बात, करता हूँ शायरी सुनाता हूँ, लेकिन यार इसका मजा लो यार, इसका मजा लो यार, पलंगो आओ जरा इसका मजा लो यार। क्या मीठा नाम है भाई, ये मौजा है, ये जिंदा मौजा है। आप अपने गम में भी कितनी बार रोते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, दस बार, पंद्रह बार, पचास बार, उसके बाद जब आप उसको सुनते हैं तो रोते होंगे लेकिन वो शिद्दत नहीं होती। गमे हुसैन ऐसा गम है, मौजा है दुनिया में, कि आप दस बार भी सुने एक दिन में तो आप उसी शिद्दत से रोएंगे। इसी तरह आप अपनी खुशी में कितना खुश हो सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, पचास बार दोबारा अगर सुनेंगे, खुश होंगे भी तो वो शिद्दत नहीं होगी। ये मौला की विला, मौला का नाम ही ऐसा है, आप 10,000 बार सुने वही खुशी होती है। सुनिएगा यार मेरे साथ रहना।

बाबा जी फरमाते ना कि यार बिना मेरा जीवन कूड़े। बड़ा दुनियादार है वो बंदा जब गुफ्तगू पे शामिल नहीं होगा, बड़ा अमीर है वो बंदा जो दुनिया में अब मौजूद है इस गुफ्तगू में शामिल नहीं हो रहा। कहता है कि यार बिना मेरा जीवन कूड़े ते मेरे अंदर दर्द हजारा, यार बिना मेरा जीवन कूड़े मेरे अंदर दर्द हजारा, वे गुलाम फरीदा मैं ते एंज कुर लावा जिमे विछड़ी कूंज कतारा। आपने कभी परिंदों का झुंड देखा हो जो एक कतार में सफर करते हैं, उनको कूंज कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो यूं रोती हूं, यूं पिटती हूं अपने आप को, जैसे एक परिंदा और अपने झुंड।

0: अच्छा, सो मैंने इसलिए कहा था कि अगर कोई ऐसा इशू हो तो आप बताया करें। अब देखिए ना, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे होते तो मुझे अंदाजा नहीं होता। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं ट्रांसमिशन आ रही है जा रही है, जरा बताएं अब ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। मीनवाइल हम कॉल लेते हैं, मैं इतनी जबरदस्त आपको वाकया सुनाने लगा था यार। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो हेलो जी, कोई नहीं है जी। अच्छा कोई नहीं है जी। 051-111-0101 अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहां से
1: सर? कैसे हैं आप? ठीक है?
0: करम अल्लाह का जी, मालिक का बड़ा एहसान है। आप सुनाए, आप ठीक हैं?
1: आज आपकी आवाज मेरे पास बहुत कम आ रही है
0: सर। आपका रेडियो खराब होगा, थोड़ा सा वहां से वॉल्यूम ऊंचा कर ले, वरना हम तो।
1: सर कैसे हैं आप? ठीक है,
0: करम करम। है। सर मालिक का बड़ा एहसान। सर किधर से बात कर रहे हैं?
1: मैं मीरपुर से बोल रहा हूँ।
0: वाह जी वाह, अमजद साहब सुनाए, क्या कहना चाहेंगे, क्या कर रहे हैं?
1: मोस्ट वेलकम जनाब, बैक आप वापस आए हैं, बहुत अच्छा लगा, मैंने बड़ा इंतजार किया यकीन करें। अच्छा, सारे जो है आरजे प्रेजेंटर जो भी आते हैं, साफ जहर मुंतखब शुदा लोग होते हैं, उनका इंतखाब किया होता है सारे, और बहुत प्यारे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन यकीन करें दिल नहीं लगता, दिल करता नहीं है कि सुने उन्हें। ये इसकी वजह ये नहीं है कि वो
0: अच्छा नहीं करते,
1: उनके साथ कोई मसला होगा या हमारे साथ कोई सुनने में प्रॉब्लम है, नहीं, लेकिन पता नहीं, मैं इंतजार करता रहा, अच्छा लगा आपको सुन के।
0: हाय हाय हाय, क्या खूबसूरत बात आपने की है, क्या खूबसूरत। वो कहते हैं दिल दा जानी जड़ा हुंदा ना, वो एको ही हुंदा है ना।
1: अच्छा सर जी, वो
0: क्या शर्मा गए हो?
1: नहीं, जो आपने बात की मैं तो वो सुन के खामोश हो गया।
0: हाँ हाँ,
1: जानी के लिए दिल भी तो वैसा होना चाहिए ना।
0: हाँ हाँ, वो कहता है कि बस दिल दा जानी जड़ा हुंदा है ना, बस वो एको ही हुंदा है। कहता है कि दिल दरिया समुद्रों डूगे तो कौन दिला दिया जाने। यार ये भाईजान, अगर आप इसको समझे ना, तो हक बाउ सुल्तान सरकार फैज बरसता है, उनकी दरगाह के ऊपर भी मैं गया हूँ, मैंने विजिट किया एक बार, तो वो कहते हैं कि दिल दरिया समंदरों डूगे। बाखुदा ये हकीकत है, दुनिया आपको आपका टाइम लेती है, आपकी आवाज पसंद करती है, अल्फाज पसंद करती है, खूबसूरती पसंद करती है, प्रेजेंस पसंद करती है, तारीफ करती है, पैसा देखती है, बाकी चको चौन देखती है, रोशनियां देखती है, लेकिन बड़ी गहरी बात है। वो कहता है कि हसीब साहब जरा सुनना है, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेज हसीब है हसीब साहब आपका सुनने के लिए, जरा सुनिएगा समझिएगा बात। वो कहता है कि दिल दरिया समंदरों डूंगे ते कौन दिला दिया जाने हो। भाई वाह भाई वाह, खैर एनीवे आप बताएं।
1: वैसे सर जी, मैं भी ना सुल्तान बाहू के इलाके शोरपुर से बिलोंग करता हूँ, मीरपुर में हूँ।
0: तो मीरपुर में क्या बिल सस्ता आता है बिजली का, इसलिए गए हुए?
1: नहीं, मैंने शादी इधर से की।
0: तो शादी इधर से की है तो आप उधर गए हैं, मतलब उनको यहाँ आना चाहिए था कि आप उधर गए?
1: नहीं, वो वहाँ पे गए थे, लेकिन फिर मैं मूव करके इधर। वालदैन जब पेरेंट्स सपोर्ट हो गए थे ना मेरे, तो
0: अच्छा अच्छा, तो आपने कहा चले इससे बेहतर है कि, मतलब ठीक है, समझ गया हूँ समझ गया हूँ, ठीक है, सही जा रहे हैं आप।
1: तो
0: यार मैं वैसे आपको एक मजे की बात बताऊँ। अच्छा, आपके फायदे सॉरी आपके एक्सपीरियंस से फायदा हम ले सकते हैं, मुझे बताएं कि कैसे लोग होते हैं मीरपुर के?
1: मीरपुर के लोग कैसे हैं?
0: अगर शादी करनी हो वहाँ पे तो इसकी बात कर रहा
1: हूँ।
0: हाँ शादी के लिए, वो तेरी खैर, भाभी सुन नहीं रही यार, बड़े बहादुर आदमी हो या मतलब छुप के बात कर रहे हो?
1: नहीं नहीं नहीं,
0: हाँ
1: मतलब बिल्कुल हुजूर, तो इसलिए कहा है कि बिल्कुल ये बात शायद ऐसा ना हो, 90% फजूल ही है।
0: अरे ऑब्वियसली आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो ना, मतलब फजूल से मुराद क्या है, गुस्से वाले होते हैं, मतलब क्या क्या आपको सही नहीं लगा, क्या मुनासिब नहीं है उनमें?
1: मेरा ख्याल में सुन भी रहे होंगे शायद मीरपुर वाले बहुत से।
0: हाँ नहीं, सुन रहे होंगे, और मैं आप बेफिक्र रहे, मैं बाकी मैं लेंटर डाल दूंगा बाद में, आप अपनी बात करें, मुझे बताएं कि आप क्यों क्यों मुनासिब नहीं लग रहे आपको।
1: मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनमें जो है ना वो क्या क्या मैं कह दूं, लेकिन ये कह सकता हूँ कि अभी जो हालात खराब है,
0: बहुत ही तंग है यार,
1: तो में पाकिस्तान कश्मीरी और यहाँ के कश्मीरी, इनमें अलग अलग होने की बात हो रही है, तो ये बात
0: और यार वो तो एक अलग पॉलिटिकल बात है ना, मैं तो शादी की हद तक बात कर रहा हूँ, मैं वो तो एक पॉलिटिकल बात है, अलग होना है नहीं, वो एक अलग, वो छोड़ दे, वो हमारी बहस ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपकी शादी देखिए हुई है मीरपुर, ऐसे ही है
1: जी जी।
0: मैंने आपसे पूछा कि शादी के लिए मीरपुर के लोग कैसे, फॉर एग्जांपल अगर रिश्ता आए तो क्या वहाँ पे शादी करनी चाहिए या नहीं, आपने कहा नहीं यार बेफजूल लोग हैं, तो मैंने यही पूछा कि क्या बुरा एक्सपीरियंस है आपका। भाईजान की हिम्मत नहीं हो रही बताने की, ऐसा ही है ना?
1: ये लोग जो है ना, ये
0: हाँ
1: एक
0: हाँ हाँ
1: तो मोहब्बत के लिए दिलेर नहीं है ये।
0: आए हाय हाय हाय हाय हाय हाय कहंदा है कि कोई बंगले विचो फोन होवे, बंगले विचो फोन होवे, सजन दा नहीं छुटदे हो जिना सख्त कानून होवे। अच्छा अच्छा अगे दलेर नहीं है।
1: ये मोहब्बत के लिए दिलेर नहीं है।
0: हाय हाय रात छड़ बैंदन रास्ते में छोड़ जाते हैं।
1: नहीं, जो मोहब्बत करते हैं वो छोड़ने नहीं देते हैं,
0: हाँ
1: लेकिन
0: वो पीछे
1: हर
0: पीछे आ
1: समय
0: जाते हैं, वो
1: अपनी
0: शोर
1: मुश्किलों को
0: कोट से
1: फील
0: फिर
1: करते
0: पुर
1: हैं।
0: चले जाते हैं। हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे
1: वो मेरे पास बैलेंस निशान भाई थोड़ा सा है, कल मैं एक गाना सुन रहा था, वो आपको डेडिकेट करने वाला था।
0: हाँ करे करे जल्दी से कर दे फिर। मैं मुझे पता है भाभी बैलेंस डलवा के देती होंगी आपको, आज उन्होंने 50 रुपए का डलवा के दिया होगा, ऐसे ही।
1: जी वो नहीं डलवा के देती, उन्हें मैं ही डलवा के देता हूँ आराम
0: हाँ
1: से।
0: तेरी खैर है जट्टा। हाँ जी गाना बताएं यार, गाना बताएं, छोड़े भागी बताएं, हमें पता है कौन किसको क्या डलवा के देता है। खैर आप गाना सुनाएं हमें। हाय तेरी ठंडिया वाह, शोर कोट तो
1: नहीं
0: मीरपुर
1: सर जी,
0: जान
1: मैं जट
0: आलिया।
1: भी नहीं हूँ, मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग
0: और
1: करता
0: चले
1: हूँ,
0: हमारे लिए
1: तो
0: आप
1: मुझे मेरी
0: राजपूत, मैं कहता हूँ हमारे लिए आप
1: पत्नी राजपूत
0: शहजादे हैं,
1: है।
0: आप हमारे लिए शहजादे हैं। और बताएं आप राजपूत नहीं, आप, मैं कहता हूँ आप राजपूत से भी ऊपर कोई है तो वो है। और बताएं आप गाना बताएं हमें यार, छोड़े बाकी बातें, गाना सुनाएं हमें।
1: जम नाल जम बरांगी रांझिया
0: आहा अच्छा गाते हैं अच्छे।
1: वे कमेगा करांगी
0: हाय
1: रांझिया
0: हाय हाय
1: वे
0: हाय
1: जिन्हें कमेगा करांगी रांझिया,
0: नहीं करती ना यार।
1: तेरा पानी भी भरांगी रांझिया
0: रांझिया
1: वे
0: में आ सच।
1: जिन्हें कमेगा करांगी रांझिया। ये मैंने आपको डेडिकेट किया और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं ये अपील कर रहा हूँ कि आप मुझे मिलने का मौका दें, और किसी वक्त कोई चलो आधा घंटा 5 मिनट 10 मिनट अपने पास गुजारने का दें। ये अल्फाज मैंने उस लम्हे के लिए बोले।
0: चले मैं जरूर इंशाल्लाह कभी मौका मिला, मैं मीरपुर आया, बल्कि मैं आया भी था, मुलाकात नहीं हुई आपसे, चले दोबारा कभी आया तो मैं जरूर बताऊंगा, या आप इस्लामाबाद आए तो जरूर मिलिएगा मुझसे। ठीक है
1: आप भी तो यहाँ पे सर्विस ऑफ है ना, तो इंस्टाग्राम में सिर्फ आपके लिए स्पेशली जो है वापस जो है वो
0: वाह।
1: डाउनलोड करूंगा इंशाल्लाह। मैंने पहले डिलीट कर दिया था, तो
0: हाँ
1: अभी मैं डाउनलोड करूंगा, आपसे टच रहूंगा इंशाल्लाह।
0: बैलेंस मुक गया भाई का। अच्छा एक कॉल और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो।
2: वालेकुम सर,
0: वालेकुम सलाम मैम, कौन? हेलो। गुड, बाजी भाग गई, बाजी भाग गई। अच्छा खैर बात ये यार कि हमने ना बहुत कुछ मिजाज के ऊपर रख के सुनने को आदत बना लिया। ये जो रांझिया वे है ना, ये बकायदा कलाम है, इट्स नॉट अ सॉन्ग, इट्स अ कलाम। मैं आपको थोड़ा सा एक वाक्य बताता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम वो विला के ऊपर भी बात करेंगे, बेफिक्र हो जाएं आप। अब जैसे प्रोग्राम चलता है बस अब यही है प्रोग्राम में और यही रहेगा प्रोग्राम में, और मुझे पता है आपको चाहिए भी यही प्रोग्राम में। मैं एक जगह पर मौजूद था, अब जाहिर है मैं बहुत ओपन अप होके तो नहीं बताऊंगा, छोटे छोटे बच्चे सुन रहे होते हैं, तो मुझे वो हम कहीं खाना खा रहे थे तो मुझे किसी ने कहा कि यार आपके लिए तो ये चीज़ बहुत आसान है क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है आपको इस चीज़ को मुयस्सर होते हुए। ठीक है मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में बात कर रहा हूँ, बच्चे तो आप है नहीं, अगर बच्चे हैं तो आप ना ही समझे तो बेहतर है, और अगर समझ रहे हैं तो बहुत बेहतरीन बात है। तो ये आज दोपहर की बात है बल्कि, तो हम खाना खा रहे थे तो उन्होंने कहा जिशान भाई हमने ट्रैवल किया है आपके साथ, आप लाइक यू नो बेसिकली वो ऑर्गेनाइजर्स थे, तो उन्होंने कहा कि हमने ट्रैवल किया आपके साथ, हमने देखा है कि ये चीज़ बड़ी आसानी से मुयस्सर हो सकती है आपको, लेकिन कभी देखा नहीं आपको इस तरह। अब उन्होंने मजाकन ये बात कही कि देखा नहीं इस तरह, लगता है कि आप बड़े पक्के खिलाड़ी हैं, पकड़े नहीं जाते या नजर नहीं आते इस तरह। तो मैंने उसको कहा कि यार मैं ये काम करता नहीं हूं, तो जब मैंने ये कहा ना कि मैंने ये काम करता नहीं हूं मैं, तो इससे पहले कि वो ये सोच लेते कि मैं कोई बहुत शरीफ आदमी हूं, तो मैंने उसको कहा कि इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत शरीफ आदमी हूं, इसलिए कि व्हेन आई से दैट आई एम द फॉलोअर और आई एम द लवर और ऑफ इमाम अली अलैहि सलाम, तो बहुत सारी चीजें हैं कि जब आप कहते हैं ना कि आप उस जात को मोहब्बत करते हैं, फिर आपके अंदर वो कुछ चीजें होनी चाहिए। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इन्वर्टेड कॉमर्स में बात थी, बहुत सारे लोग शायद समझ गए होंगे, नहीं समझे तो खैर। अब उस सोच को रखते हुए या इस बात को रखते हुए सुनिएगा, कहता है कि होता

कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर कुछ मेरे लिए आसान है भी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मेरा वो दिल करने को चाहता भी है, इंसान हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर बहुत सारे लोग मेरी सराउंडिंग में वो काम करते भी हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। क्यों? आपसे मोहब्बत है ना, आपने मना किया है।

मैं नहीं जानता दुनिया मोहब्बत को किस तरह गिरदानती है, मैं मोहब्बत को इस तरह गिरदानता हूँ कि जिस्म मेरा मर्जी उसकी। हाय हाय हाय हाय।

सुबह शाम सदा लगा के जाता हूँ हक की, फिर भी मेरी माँ कहती है जरा लाल मेरे लाल, जरा और सुबह से शाम तलक सदा लगा के जाता हूँ हक की, फिर भी मेरी माँ कहती है मेरे लाल जरा और जरा और जरा और। हम जिक्र हैदर यूं ही सदा करते रहेंगे, हम जिक्र मौला यूं ही सदा करते रहेंगे, हम जिक्र सरदार यूं ही सदा करते रहेंगे, तू फतवे लगा और लगा और लगा और। नहीं आया वो बंदा इस महफिल में जो

पता है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अर्श पर गए और नमाज के हवाले से उनको अहकामात जारी किए गए, कितनी थी? बाज रवायात हैं 500। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 500 पे भी राजी हुए, मुड़े फिर पलटे। खुदा ने कहा 500, चलो 550। 50 पे भी राजी हुए, फिर पलटे। 50 भी ज्यादा अपने लिए नहीं। रसूल अल्लाह ने तो फरमाया कि जो मेरे होंगे वो पढ़ेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से तो सारी रात तकबीर की आवाज आती थी, सदा आती थी। कमी मेरे और आपके लिए करवाते रहे। कुछ लोग तो कहते होंगे एक फिर और मार लेते, पांच जो थी उनसे भी जो है छुटकारा मिल जाता। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन जानते थे कि 5 रखनी है। वजह फर्क तो पता चले मेरा कौन है, दूसरी साइड वाला कौन है। आपका हर अमल जो है वो रिलेटेड है सजदे के साथ, मेरी बात याद रखिएगा। मैं कोई मौलवी नहीं बनना चाह रहा, मैं सिर्फ थोड़ी सी गुफ्तगू आपकी करके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। सबसे बड़ा अमल है सजदा। लेकिन मसला क्या है, सजदा तो दूसरी तरफ के लोग भी कर रहे थे, साबित क्या हुआ? वो सजदा जो अल्लाह को चाहिए, इबादत भी करनी वो है जो अल्लाह को चाहिए। हाय हाय हाय। और अल्लाह को इबादत कौन सी चाहिए?

को इबादत वो चाहिए जिसमें हुसैन को छोड़ा ना जाए, नाराज ना किया जाए। मैं दलील देता हूँ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर किसी की नमाज है, मुकम्मल नमाज है भाई। पैगम्बरे आजम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबियों के सरदार, उनसे बेहतर कोई नमाज अदा कर सकता है? कतअन नहीं। रसूल सजदे में मौजूद, इमाम हुसैन अलैहि सलाम कांधे पर, नमाज खड़ी रही, हुसैन बैठे रहे। मैंने पहले ही कहा कि सबसे बड़ा अमल सजदा है। अब अगर कोई ये समझे कि हम जिक्र करें, नमाज हकीर जाने, बा खुदा उसने हुसैन को समझा ही नहीं। और अगर कोई ये जाने कि हम सिर्फ सजदा करें, हुसैन को छोड़ दें, बा खुदा उसने खुदा को समझा नहीं।

0: वालेकुम कॉलर, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो हेलो वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से?
1: जी भाई, मैं लाहौर से रिमशा, उम्मीद है क्या बिल्कुल ठीक ठाक
0: होंगे? क्या हाल है भाई, कैसी हो? ठीक हूँ
1: जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शो सुन रही थी, बहुत खुश हुई आप आए हैं शो करने के लिए।
0: बस क्या करें, सादे से लोग हैं, आम से लोग हैं।
1: नहीं, आप तो बहुत मशहूर हैं।
0: अच्छा, और सुनाएं क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं ये कहना चाहूंगी भाई, वैसे आप बात भी बहुत अच्छी करते हैं, जब मतलब बच्चे को ना समझ आ रही हो आप इजिली इतनी आसानी से समझा देते हैं, और बस तो मुझे भी कुछ बातें नहीं समझ आ रही होती, लेकिन आप उनको इतना आसानी से जब बयान कर रहे होते तो वो मुझे बात समझ आ जाती है।
0: इसका मतलब मेरे बच्चे मेरे से बड़ा खुश रहेंगे, ऐसे ही?
1: जी बिल्कुल, क्योंकि आप बात को बहुत अच्छे तरीके से बयान करते हैं और वो समझ भी आसानी से आ जाती है।
0: सही बात है। बस क्या करें, जिन लोगों को बचपन में समझाया ना जाए ना, वो बड़े होके समझा बहुत अच्छा लेते हैं। ओए होए होए होए यार, ये जुमला सुनो लाहौर वालों, जुमला सुना है यार? नहीं सुना जुमला? जिन बच्चों को बचपन में समझा ना जाए वो बड़े होके समझा बहुत अच्छा लेते हैं। भाई क्या जुमला है यार, क्या जुमला। हाँ जी
1: ऐसे ही है बिल्कुल।
0: और कुछ कहना है? हम आगे बढ़े। इक्तदार साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो कॉल कीजिए, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूँ। मैंने तो बड़ा मजे का एक वाक्य सुनाना था जी, और कुछ कहना चाहेंगे?
1: और बस मैं ये कहना चाहूंगी, मेरी कॉल मिल गई, बस ये काफी, क्योंकि आप ये होता है कि भाई आपसे ना काफी मैं कॉल कर रही होती तो मैं डर जाती हूँ।
0: तो आपकी आवाज क्यों कांप रही है? मैं यही पूछने लगा था, आपकी ठंड है? आपकी
1: बात कर रहे हैं ना खुश होकर कर रही, इसलिए मैंने कहा मैं बात कर लूं।
0: यार क्यों मुझे इस सवाल का जवाब? अच्छा रिमशा, मुझे बेटा इस सवाल का जवाब चाहिए, और जो कमेंट कर रहे हैं मुझे कमेंट्स में जवाब दो इस चीज का, जो इंस्टा पे हो इंस्टा पे जवाब दो, आप कॉल पे हो तो आप कॉल पे दो। मतलब ये क्यों है, मतलब डर क्यों है, मतलब सीरियसली क्यों है? मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा किसी को।
1: नहीं नहीं निशान भाई, आपको मैं सही बताऊं,
0: हाँ।
1: आप से ना सब मोहब्बत कर रहे होते हैं, देखिए
0: कैसी मोहब्बत है जिसमें डर है।
1: रेडियो सुनना स्टार्ट हुई थी तो पहली मतलब मैंने आपको ही सुना था, और अच्छा। आदत मुझे आपसे ही पड़ी है रेडियो की, ठीक है? लेकिन ना मुझे पता नहीं क्यों, जब ना आप लड़कियों से बात कर रहे होते हैं ना, आप उनको ना पता नहीं गुस्से में आके ऐसे बोल देते हैं, बेचारी डर जाती है कि हाय ये बंदा कुछ कह ही ना दे।
0: देख लें बड़ी वैसे।
1: और एक जो है ना आज क्या नाम है उनका, जो शो करते हैं, मुझे उनका नाम भूल गया, आतिर भाई।
0: आतिर भाई से तो डरे भी वो, बाकी
1: एक आतिर भाई से डरते हैं कॉल मिलाते हुए, वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। एक
0: वो असल में बड़े मासूम, आतिर भाई बहुत मासूम आदमी, आतिर भाई बहुत अच्छे आदमी, अच्छे भी हैं और मासूम भी हैं। बस वो क्या,
1: नहीं, वो बहुत अच्छा शो करते हैं, लेकिन ना वो सीरियस हो जाते हैं।
0: अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, उनको एक चीज के बारे में बहुत जबरदस्त नॉलेज है, मैं बड़ा मुतासिर हूँ उनके उस नॉलेज पे। पता है आपको, पूछे किस चीज के बारे में?
1: जी कौन सी?
0: कॉफी के बारे में, उनको कॉफी के बारे में बहुत नॉलेज है, वो मतलब भाई कमाल नॉलेज है उनके पास कॉफी का। अगर कोई कॉफी लवर है,
1: उन्हें कॉफी ज्यादा पसंद है।
0: मैं कहता हूँ उनको ऐसे पसंद है कि जैसे, बस मैं आपको क्या बताऊँ कैसे पसंद है। आतिर भाई अगर आप सुन रहे हैं तो हेलो आएगा, जरा मैसेज भेजिएगा।
1: बस निशान पर मैं आपसे यही कहूंगी कि प्लीज अगर कोई आपको लड़की कॉल करती है तो प्लीज आप उन्हें डर रहे हो मत करो, थोड़ा सा ना खुश होकर बात कर ले।
0: मैं खुश होकर बात करूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। यार ये ट्रांसमिशन ठीक नहीं आ रही, क्या मसला है भाई? अगर कोई ट्रांसमिशन का इशू है और प्रोडक्शन रूम में मेरी आवाज सुनी जा रही है तो प्लीज सही कर दें। बच्चे 13-14 दिन के बाद सुन रहे हैं, बच्चों को खुश हो रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे खुश हो जाएंगे और क्या है।

0: السلام علیکم. کاش اقتدار صاحب لائن میں آ جائیں. ہیلو.
1: وعلیکم السلام.
0: اقتدار صاحب مانتے ہیں پھر آپ دیکھ لیں. کہتے ہیں تقدیر دی مڑ جاندی ہے, فقیر دی نہیں مڑ دی.
1: آپ کو مانتا نہیں ہوں, آپ کو پہچانتا ہوں.
0: سر اقتدار صاحب رکیے گا رکیے گا رکیے گا, با خدا اب آپ دیکھیں. کہتے ہیں کہ تقدیر کی مڑ جاتی ہے, فقیر کے منہ سے نکلی نہیں مڑتی. اچھا تو چلے,
1: آپ نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے.
0: ہاں جی ہاں جی.
1: کہ جب میری آپ سے بات ہوتی ہے تو گفتگو کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے.
0: ایسے ہی
1: اور بندے کا پتہ نہیں کون سا آج موڈ ہو, آج کچھ اور گفتگو کرنے کا ہو اور میں کوئی اور بات کھول دوں تو گفتگو کہیں سے کہیں چلی جائے گی.
0: میں اس میں تھوڑا سا ایک ترمیم کر دوں اگر آپ کی اجازت سے. آپ بڑے آپ کی اجازت سے. اس میں ترمیم یہ ہے کہ مسئلہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہماری منزل ایک ہوتی ہے, رستہ مختلف ہو سکتا ہے, منزل ہمیشہ سے ایک ہوتی ہے, تو اس میں اتنے کے مسئلے کی بات ہے نہیں.
1: بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
0: اور آپ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو پرانے شہروں میں سے نئے رستے تلاش کرتے ہیں.
1: بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
0: اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں, پھر کچھ مولا کی ولا کی چند لائنیں آپ کے ساتھ اور پھر جو آپ فرمائیں. آج نا سر میں نے ایک حدیث کے اوپر سیگمنٹ بنایا ہے.
1: جی.
0: اور ہم سب کا سر کامل ایمان ہے اس بات کے اوپر نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہے اگر ہم اس کو ڈی کوٹ کریں سمجھیں تو ان کے ہر لفظ میں کائنات چھپی ہے. ایسا ہی ہے. اگر فرض کریں انہوں نے تین بار کسی چیز کو کہا تو اس کا مطلب اس تین کے عدد کا تعلق ہے کسی چیز کے ساتھ. ایسا ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو میں شریک ہوئے ایک شخص اور کہا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا. پھر پوچھا میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے, کہا تمہاری ماں کا. پھر پوچھا سب سے زیادہ حق کس کا ہے, تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا. چوتھی بار پوچھا تو کہا تمہارے والد کا.
1: اب
0: میرا جو جستجو ہے وہ یہاں رکی آ کے کہ بھائی دو بار ہو جاتا, ایک بار ہو جاتا, تین بار ہوا, چوتھی بار بھی ہو جاتا. اگر دیکھیں وسعت بتانی تھی, یہ جو تین پہ رکے ہیں اس تین پہ رکنے کی کوئی وجہ ہے. اب اس تین پہ رکنے کی جو وجہ ہے وہ آج میرا سیگمنٹ ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ عورتیں لازمی سنیے گا. یہ جو تین پہ رکنے کی وجہ ہے وہ آج میرا سیگمنٹ ہے, آپ سنیے گا اور پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور بتائیے گا. لیکن اب آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, اس کے بعد پھر میں کچھ واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے پھر ہم ولا کی طرف بڑھیں گے. حکم کریں. ہیلو.
1: اتنے سارے ٹاپک جمع ہو گئے, میرے تو سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ رکنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جب آپ جیسا پریزنٹر ہو, اور اس کے بعد لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آپ نے جو چیز پوچھی ہے اس کا کیا جواب دیں. پھر وردی جواب دیں, فوراً جواب دیں, برجستہ جواب دیں, اس میں وقت کیوں ضائع کرتے ہیں. آپ نے پوچھا ہے کہ فلاں جگہ کے لوگ کیسے ہوتے ہیں, یا اگر وہاں شادی کی جائے تو کیسا ہے, یہ ایسے ہی بات تھی نا.
0: ایسے ہی
1: تو اس میں سوچنے کی کون سی کوئی سکھارا دیکھنے کی ضرورت ہے کیا
0: سر؟ بس وہ اگر میرے ساتھ مجھے اگر میرے جیسے مجھے دو اور مل جائے نا
1: جی
0: میرے جیسے اگر مجھے دو اور مل جائے نا
1: جی
0: تو میں
1: آپ کے جیسا فی الحال اس وقت میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں کسی کے بارے میں, مگر میں نے چاروں طرف سب کو دیکھا ہے, ایسا مجھے کوئی یونیک
0: اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سر, مجھ سے بہتر ہیں. اچھا اب واقعہ سن لیجیے. اب جو جتنے ینگسٹر سن رہے ہیں اور جتنے مومنین مومنات مسلمان غیر مسلمان کسی بھی کاسٹ مذہب رنگ نسل سے آپ کا تعلق ہو, امام علی علیہ السلام سب کے ہیں, ان کے اوپر کسی کی اجارہ داری نہیں. تو اب ذرا واقعہ سنیے گا سر. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو ارشاد فرمایا گیا کہ علی علم کا دروازہ ہے اور میں شہر ہوں, ٹھیک ہے, یہ رسول اللہ نے علی کی محبت میں کہہ دی ہے کہ واقعی ایسا ہے, अब मजा लीजिएगा, लुत्फ लीजिएगा, अगर आप भी जुमलों का मोल नहीं डालेंगे फिर मैं कहाँ पढ़ूंगा जाके, ठीक है?
1: बिल्कुल।
0: अब ये मोहब्बत में कह दी है, अब देखें ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी सनद है कि क्या मोहब्बत में कह दी है, इसका मतलब रसूल खुदा की मोहब्बत देखें आप इमाम अली से, ठीक है? तो उन्होंने कहा क्या ये मोहब्बत में कह दी है या वाकईतन ऐसा है? तो उन्होंने कहा कि चले ऐसा करते हैं कि टेस्ट करते हैं
1: जी।
0: और 10 लोग कमोबेश 10 लोग जो है, उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम अली के पास जाएंगे और 10 के 10 एक ही सवाल पूछेंगे अली से। अगर अगर अगर तो जवाब हुआ एक ही, फिर तो समझ लेंगे कि अरे नहीं भाई बस एक नॉर्मल सी बात है। और अगर जवाब की दलील हर बंदे को मुख्तलिफ दी अली ने,
1: वाह वाह क्या बात,
0: तो फिर मान लेंगे कि वाकई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ महज मोहब्बत में नहीं कहा, वाकई कुछ कैपेबिलिटी है इमाम अली में।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो पहला बंदा आया, उसने सवाल किया कि अली सवाल है आपसे, और सवाल ये है कि इल्म बड़ा है या दौलत बड़ी है? सवाल हो रहा है इमाम अली से, ठीक है, इल्म बड़ा है या दौलत बड़ी है, या यूं कह लीजिए कि इल्म की फजीलत ज्यादा है या दौलत की ज्यादा है? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यकीनन इल्म की फजीलत ज्यादा है। अब उस शख्स ने कहा कि दलील दीजिए, दलील मांगी, तो इमाम अली ने कहा कि इल्म को चोरी नहीं किया जा सकता जबकि पैसा चोरी हो सकता है, पैसा चोरी किया जा सकता है। उस शख्स ने दलील उठाई और चला गया। अगला बंदा आया, उसने कहा इमाम अली अलैहिस्सलाम सवाल है। इमाम ने कहा मैं बैठा ही इसलिए हूं कि आप सवाल करें, मैं जरा मफहूम मैं जरा थोड़ा सा मफहूम थोड़ा सा बना रहा हूं, ठीक है, मैं जरा मौजू बना रहा हूं, मजमून बना रहा हूं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जो सुन रहे हैं, मौला की विला में बुलंद होने वाले हाथ कभी किसी कमजर्फ का मोहताज ना हो। उस शख्स ने भी यही सवाल किया कि मौला इल्म की फजीलत ज्यादा है या माल की? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा यकीनन इल्म की फजीलत ज्यादा है। उसने कहा दलील दीजिए। अब इंतजार यह था कि बात करें कि इल्म जो है वो चोरी नहीं हो सकता और माल चोरी हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाए, लेकिन मौला ने इस बार कहा कि इल्म वाले के दोस्त ज्यादा होते हैं, पैसे वाले के दुश्मन ज्यादा होते हैं। वो शख्स चला गया, वो शख्स चला गया। अगला आया, तीसरा आया। अब पहला वाला गया, दूसरा गया, दूसरे वाले ने कहा भाई मुझे तो दलील मुख्तलिफ, तीसरे वाले ने कहा अरे मैं जाता हूं, तीसरे वाला गया, उन्होंने कहा इमाम अली सवाल करना है
1: जी।
0: इमाम अली ने यकीनन कहा होगा पहले वाला ही करना है या सवाल मुख्तलिफ है। सवार क्या फिर सवाल यही हुआ, इमाम अली अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि मौला ये बताइए कि इल्म की फजीलत ज्यादा है या माल की? तो मौला ने कहा कि यकीनन इल्म की फजीलत ज्यादा है, उनका दलील दीजिए। तो मौला ने कहा कि जिसके पास इल्म होता है उसके पास कभी गरूर नहीं आता, और जिसके पास माल ज्यादा आ जाए उसके पास गरूर आ जाता है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या ऑथेंटिकेट जवाब है,
0: अच्छा
1: क्या मुदल्ले जवाब है, वाह वाह वाह।
0: अब मुझे बाखुदा ना इन सवालों से वो रश्क आया ना जवाबात, तो खैर मौला की क्या ही जवाबात है, मुझे उस आखिरी जुमले पे यकीन जाने मेरे जिस्म ने नहीं मेरी रूह ने धमाल किया। अब वो मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूं और फिर कलाम चला रहा हूं, मैं देखूंगा कि किस मकाम पर आप मेरे साथ जुड़ते हैं जाके, ठीक है? तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया, आखिर जब 10 के 10 पूरे हो गए और 10 के पास मुख्तलिफ दलाइल हुए, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया कि ये तो 10 थे, अगर ये एक ही सवाल मेरे साथ कयामत तक भी करते रहे तो मैं हर एक को मुख्तलिफ दलील देता रहूं।
1: मुख्तलिफ जवाब देता। वाह वाह वाह, ऐसे ही खतीब मेंबर सरूनी थोड़ी कह रहे हैं।
0: हाय हाय, भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह,
1: ऐसे ही थोड़ी, बल्कि अगर आप इजाजत दें तो मैं इसमें थोड़ी सी तरमीम आऊंगा।
0: जरूर जरूर जरूर जरूर,
1: सिर्फ सिर्फ यही नहीं है, बल्कि मैंने एक आलम दीन को सुना था कि गांव में और शहर में फर्क होता है, देहात में, देहात में कोई चीजें मिलती हैं कुछ नहीं मिलती हैं, शहर वो है जहाँ पे जरूरियात जिंदगी की हर चीज मिल जाए।
0: भाई वाह भाई वाह भाई वाह,
1: इसीलिए कहा ना मदीना तो इन बालू इन बाबोहा।
0: भाई वाह भाई,
1: और एक मौका ऐसे ही आया था कि जनाब अमीर तशरीफ फरमा थे और लोग आके सवाल करते गए कि नहर खुश्क हो गई है का अस्तगफार पढ़ो, का औलाद नहीं हो रही का अस्तगफार पढ़ो, कहा के पानी जो है वो खुश्क हो गया है, कहा कि हर चीज के अस्तगफार पढ़ो अस्तगफार पढ़ो, खेत वीरान हो गया है का अस्तगफार पढ़ो, दर्जनों सवालात किए गए अस्तगफार पढ़ो। और आपको पता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के चाहने वाले कैसे थे, हजर इब्ने अब्दी, तासा बिन सुहान।
0: यार अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये अभी आपने नाम लिया है जिनका, उजर इब्ने अदी का
1: जी,
0: इनको इनको वक्त का जो हुक्मरान था उसने बुलाया अपने दरबार पर और कहा कि सुना है कि तू बड़ा अली का आशिक है, बड़ा अली अली करता है, मत कर। इनाम का भी कहा, बाकी मामलात भी कहे। तो इन्होंने कहा, अब सुनिएगा बाकी, आपने कहा कि हम दम भरते हैं आशिक होने का, ये बा खुदा इमाम अली के तो आशिक भी, आशिक का मियार देखिएगा। मैं आपने देखें मेरे जहन में नहीं था लेकिन आपने नाम लिया तो बस इस महफिल की बरकत से नाम आ गया। अभी जितने यंगस्टर सुन रहे सुनना जरा और सर्च भी करना है इसको। तो अजर इब्ने अदी को उसने जब बुलाया तो कहा कि तुम मत नाम लिया करो, तो उसने कहा कि मैं नहीं लूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उसने कहा भाई क्या शर्त है, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, क्या चाहिए? कहा नहीं, ये मेरे जो दो बेटे हैं ना इनको मेरे सामने कत्ल कर दे।
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: सुनिएगा भाई सुनिएगा, सलामत रहे सलामत। हम ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं जवानियां कुर्बान करते, ऐसे ही नहीं जवानियां रखते इमाम अली अलैहिस्सलाम के, इमाम अली अलैहिस्सलाम के पांव से उठने वाली धूल पे ऐसे नहीं लोग जवानियां कुर्बान कर देते अपनी। तो अब वो हैरान हो गया बादशाह कि यार एक कैसा आदमी है कि मतलब मांगता, दौलत मांगे, महल मांगे, पैसा मांगे, आशिशें मांगे, कह रहा है भाई ठीक है जो तुम कह रहे हो, तो तुम जो कह रहे हो मैं करूंगा लेकिन मेरे बच्चे मार दो। तो अब उसने कहा भाई तुम कुछ और मांगो। कहा नहीं, तू जो चाह रहा है मैं करूंगा लेकिन मेरी शर्त यह है कि ये मेरे दो बेटे हैं या एक बेटा है इसका, इनका सर कलम करते, इनको मार दो। उन्होंने कहा ठीक है, अब ये कह रहा है तो करो। उन्होंने सर कलम कर दिए उनके, जब सर कलम किए तो अजर इब्ने अदी जो है वो हंसे और हंस के कहा कि मैंने इसलिए इनको पहले शहीद करवा दिया कि कहीं मेरी मौत देखकर ये अली अली कहना ना छोड़ दें। ठीक है,
1: तारक में यही बात।
0: अच्छा फिर उसके बाद
1: तू उसको दौलत का और उसको तू मेरी मौत का खौफ दिला के अली से मुजारिफ ना करवा दे, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे नजरों के सामने मेरे बेटे को तू कत्ल कर दे।
0: अच्छा एक और मजे की बात, सबसे ना मौला अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें बहुत सारे पहलू हैं उनकी जिंदगी के, खास तौर पे खुदा की कसम मेरा दिल करता है ये टाइम कम है मैं अली पढ़ूं लोग सुने, खुदा की कसम। और सिर्फ हमने महदूद कर दिया इमाम अली अलैहिस्सलाम को खैबर तक, ओहद तक, उनकी बहादुरी, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं कि मतलब बहादुरी तो उनके मतलब मिराज है ना उनके पास। लेकिन अगर आप उनकी पर्सनैलिटी, आजकल में असल में दो चीजें हैं जिनसे मैं सफर कर रहा हूँ, जिनसे मैं गुजर रहा हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ। एक है जो काफला है करबला का, उसके मदीने से लेके वापस मदीने तक का सफर, एक ये सीरत में, एक ये सीरत मैं स्टडी कर रहा हूं आजकल। दूसरा इमाम अली अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी के जो मुख्तलिफ पहलू, मैं अब आपको एक पहलू उनका डिस्कस करता हूं आपके साथ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे जो सबसे ज्यादा मतलब मुतासर से मतलब मेरी रूह रक्स करती है वो पता कौन सा पहलू है उनका, उनकी जो बेनियाजी है। मैं आपको एक उनका वाक्य बताता हूँ। मीसम तमार एक और उनके गुलामों में से, ठीक है। तो मीसम तमार को इसलिए मीसम तमार कहते हैं कि मीसम उनका नाम और तमार कहते हैं खजूरें बेचने वाले को, तो वो खजूरें बेचते थे। एक दिन मीसम तमार अपनी दुकान पे मौजूद थे तो मौला अली अलैहिस्सलाम गुजरे उनके पास बैठ गए। तो मीसम तमार ने कहा कि मौला मुझे चंद लम्हों के लिए कहीं पर जाना है, आप यहां पर मौजूद हैं? तो मौला ने कहा मैं मौजूद हूं। तो इतनी देर में एक शख्स खजूरे लेने आया, उसने कहा कि अली खजूरे चाहिए। मौला ने कहा उठा लो। भाई बेनियाजी देखें आप, ठीक है। अब ये बात सुनने से तारक रखती है, यकीन करें जब मैं पढ़ रहा था मेरी आंखों ने न जाने कितनी बार वजू किया और मैं कितनी बार मुस्कुराया। मौला की बेनियाजी देखे, कहा अली खजूरें चाहिए। भाई खजूरें हो मीसम की और बेचने वाला अली हो, भाई वाह भाई वाह भाई। अच्छा सो उस शख्स ने कहा कि अली खजूरें चाहिए। मौला ने कहा ले लो जितनी चाहिए। कहा पैसे कहा है, गले में डाल दो। ओ भाई अली को दुनिया से क्या लेना देना, ठीक है। तो मतलब उसने कहा पैसे, मौला ने कहा गले में डाल दो। कहा खजूरें, उन्होंने कहा सामने पड़ी उठा लो जो उठानी है, ठीक है। इतनी देर में मीसम में तमार वापस आ गए, वो शख्स खजूरें लेके चला गया। मीसम में तमार ने जब देखा तो कहा मौला कोई आया था? कहा हाँ कोई शख्स आया था, खजूरें चाहता था, ले गया और जितने पैसे थे वो गले में डाल गया। कहा मौला ये तो खोटे सिक्के हैं, ये तो सिक्के कोई गलत दे गया, ये तो खोटे सिक्के हैं, ये तो चलने वाले नहीं है। मौला ने कहा रुक जाओ अभी चंद लम्हे, तुम्हें पता चल जाएगा। अब देखा कि उस शख्स को घर वाले पीठ पे मारते आ रहे हैं, थपकी देते आ रहे हैं, जैसे कोई नवाला फंस जाता है तो थपकी देते हैं ना पीछे से, तो उस शख्स को थपकी देते आ रहे हैं। वो जैसे ही उस दुकान के पास या उस जगह पर पहुंचा जहां पर खजूरें थी, तो थपकी दी तो गले से जो खजूर निकली वो पत्थर की थी। तो कहा अली ये कैसी खजूर है? तो इमाम अली ने कहा कि जैसे पैसे थे वैसे ही खजूर है। दुनिया नहीं समझी, दुनिया नहीं समझी,
1: क्या बात है, क्या बात,
0: यही वजह है, यही वजह है। फजाइल पढ़ चुका मसाइब का एक जुमला आपके हवाले करके बस फिर हम आगे बढ़ेंगे। यही वजह है कि कूफा के कुएं में अपना अक्स देखकर मौला ने तीन बार कहा हाय हसरत, हाय हसरत, हाय हसरत। सात लोगों ने पूछा मौला आपकी कोई हसरत? कहा हाँ दो हसरतें लेकर दुनिया से जा रहा हूं, जितना मैं सखी था उतना किसी ने मांगा नहीं, और जितना मुझे इल्म था उतना किसी ने मेरे से पूछा नहीं। खुश रहिए सर, खुश रहिए, और जरूर सुनिएगा सेगमेंट, जरूर सुनिएगा। वो तीन बार पे क्यों रुके, तीन बार पे क्यों रुके मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, सेगमेंट सुनिएगा।
1: मुझे मुझे बंद करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं, जिस वक्त गजीर का मौका था और आपने उनके ऊपर कलाम पढ़ा था और जो कुछ भी आपने कहा था उसके बाद से जो आप गिरिया कर रहे थे, मैंने ऐसे गिरिया करते हुए शाहर जी लोगों को देख,
0: अल्लाह बस कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह
1: कम लोगों को देखा है। और मौला अली फरमाते हैं जब कोई तुम्हारी तारीफ तुम्हारे मुंह पे करे तो एक मुश्तक खाक उठाओ और मुंह पे दे मारो पे झूठ बोलता है,
0: ऐसा ही है,
1: मगर क्योंकि कलाम साहिबुल नजिल बलागत का है
0: जनाब,
1: अकवाल जहां हमें अमीर का है, तो दो राय मुमकिन ही नहीं है।
0: ऐसे ही, ऐसे
1: मौला ने कह दिया कि अगर कोई तारीफ तुम्हारे मुंह पर करे तो एक मिठा खाक उठाओ उसके मुंह पर दे मारो कि वो झूठ बोलता है, मगर मौला का एक एक हर्फ, एक एक जुमला, एक एक लफ्ज ऐसा है जो मैं कहता हूँ कि उसके लिए हमारे पास कोई ऐसी धात अभी आई नहीं है।
0: कोई शक
1: होना चांदी तो बड़ी हकीर चीज है,
0: कोई शक
1: वो तो हम सिर्फ तरबी इश्तेहारात में इस्तेमाल करते हैं, वगरना मेरे मोमिनीन के लिए अल्फाज को चीज से पिरोना और बताना सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक,
0: कोई शक नहीं इसमें, कोई शक नहीं। खुश रहें सर, बहुत शुक्रिया,
1: नहीं है, बहुत शुक्रिया,
0: बहुत शुक्रिया जी। इंतजार साहब हमारे साथ रहे, बस एक कलाम शामिल करेंगे उसके बाद वापस आके सेगमेंट शुरू कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि कोई मसला नहीं है, 10-15 मिनट ऊपर भी हम चले गए तो खैर है आपकी इजाजत से। और ख्वातीन खास तौर पर जरूर सुनिएगा जो सेगमेंट में कह रहा हूँ, और जो मर्द हजरात सुन रहे हैं आप इसको समझिएगा जरूर इस सेगमेंट को। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि नतीजा अच्छा निकले, मेरे साथ सफर कीजिएगा और बस फिर आगे बढ़ता हूँ।

जिन लोगों को ट्रांसमिशन से इशू है तो शायद लाहौर से अगर आप लिंक करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरनेट पे सुन रहे हैं तो एफएम 101 लाहौर से अगर आप लिंक करते हैं या फैसलाबाद से लिंक करते हैं तो उस पर ट्रांसमिशन ठीक है। गालिबन जो इस्लामाबाद की लिंक है उसमें शायद डाउन आ रहा है जो मुझे बताया जा रहा है। काइंडली देख लें इफ़ इट्स पॉसिबल तो मैं सेगमेंट शुरू करूँ, बिकॉज मेरे सेगमेंट बनाने में बड़ी मेहनत होती है मेरी। मैं नहीं चाहता कि मैं पूरा सेगमेंट कर जाऊँ और फिर आप लोग कहेंगे ट्रांसमिशन नहीं आई, तो देर इज़ नो पॉइंट टू टॉक। अदरवाइज कोई मसला नहीं है, हम इसको नेक्स्ट थर्सडे पे भी कर सकते हैं। मेरी अगर आवाज़ प्रोडक्शन रूम में जा रही है सो काइंडली प्लीज़ इफ़ यू कैन चेक, ट्रांसमिशन ठीक आ रही है सर? ज़रा सही है, अच्छा चले यहाँ से तो ठीक है। बाकी दो तीन मिनट वेट करते हैं फिर अदरवाइज़ हम स्टार्ट करते हैं अपने सेगमेंट को।

वेल मैं बिल्कुल जरूर इसके ऊपर हम देख रहे हैं इसको, हमारी टेक्निकल टीम भी इसको चेक कर रही है। मैं एक दो मिनट के बाद इंशाल्लाह सेगमेंट शुरू करता हूँ, लेकिन यार एक चीज़ की मैं बड़ी मोहब्बत और बड़ी आपकी मैं हौसला अफजाई भी करना चाहूँगा कि माशाल्लाह जिस तरह आप इंतज़ार कर रहे हैं, बिकॉज मैं भी अपना इंस्टा देख रहा हूँ तो माई इंस्टा इज़, आई रियली वॉन्ट कि मैं किसी तरह आपको दिखा सकूँ कि माई इंस्टा इज़ एक्चुअली फ्लडेड कि नो नो नो नो नो वी वेटेड फॉर ऑलमोस्ट 2 वीक्स, प्लीज़ गो विद द सेगमेंट। बहुत सारी जगहों पे ट्रांसमिशन ठीक आ रही है, तो जहाँ पे ठीक आ रही है वहाँ पे दे आर सेइंग कि नहीं नहीं नहीं नहीं बिल्कुल वेट नहीं, अगले हफ्ते पे नहीं, एंड वी आर एक्चुअली वेटिंग, प्लीज़ गो अहेड। सो यार आप लोग सुनते हैं इतनी शिद्दत के साथ, आजकल कौन किसको सुनता है भाई, किसी के पास टाइम नहीं यार, बंदा समझदार है। मैं भी कोई ऐसी बात नहीं करता जो कि शायद आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत, अल्लाह ताला ने आपके दिलों में मोहब्बत जो डाली है, अल्लाह ताला इसको कायम रखे, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मुझे कभी कभी इमोशनल भी कर देती हैं, तो चलें मैं एक दो मिनट बाद सेगमेंट शुरू करता हूँ। मैं ज़रूर, मैं हाज़िर जी, मैं नौकर जनाब, मैं

अच्छा मजे की बात है कि जिनके यहाँ ट्रांसमिशन ठीक आ रही होती है ना, वो मुझे बार बार मैसेज करे, सुशांत भाई ठीक है आप करें प्लीज, शुरू करें। और मैं सद के जाऊँ, मैं शुरू तो कर दूँ, जिनकी ठीक नहीं आ रही उनके लिए एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, अपने ही उनको भी साथ शामिल करते हैं फिर शुरू करते हैं। हाँ ठीक है आप शुरू करें।

بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں جی، اب جہاں جہاں پر آ رہی ہے قسمت ہے، انشاءاللہ امید ہے، کیونکہ بہت سے جگہوں سے اب کمنٹس یہی آ رہے ہیں کہ ٹرانسمیشن ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ کو۔ کچھ چیزیں یار ہمارے معاشرے میں ایسی ہو رہی ہیں جو کہ ہمیں شاید براڈر اسپیکٹرم میں ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ ایک بندے کی سوچ ہے، اس سے کیا فرق پڑتا، لیکن وہ ہمیں لانگر رن میں بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس واقعے کی طرف آؤں جو کہ میں نے کہا کہ کچھ دن پہلے میرے ساتھ پیش آیا، اور پھر اس کو ہم لنک کریں ان تمام تر ریسرچز کے ساتھ جو کہ میں نے کی اور آپ کے سامنے میں رکھوں، آپ کے اذہان عالیہ کے گوش گزار کروں تاکہ بات آپ تک پہنچے، اس کے بعد پھر فیصلہ کرنا آپ کا حق ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں ایک فراڈ یا اسکیم کے طور پہ ہو رہی ہیں۔ کوئکلی میں ذرا اس کے اوپر بات کر لوں، کیونکہ میرے پاس بھی ایک دو کیسز ایسے آئے کہ ذیشان بھائی یہ ہوا ہے، اب کیا کریں، تو اس وقت کچھ ہو نہیں سکتا ہے پھر۔ اور کچھ اس طرح کے واقعات ہیں کہ جس میں کچھ لوگ فیس بک کے تھرو دوستی کرتے ہیں فیمیلز، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم باہر ہیں، کوئی کہتا ہے ہم انگلینڈ میں ہیں، اٹلی میں ہیں، امریکہ میں ہیں۔ کوئی 15-20 دن دوستی کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو گفٹس بھجوانا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ انسانی فطرت ہے، کہیں نہ کہیں لالچ آ جاتی ہے، تو وہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کوئی 2 تولے سونا یا 3 تولے سونا بھجوا رہے ہیں، وہ کوئی ویڈیوز وغیرہ بھی دکھاتے ہیں اور وہ بھیج دیتے ہیں۔ پھر یہاں سے ان کو کوئی کال جاتی ہے ان خواتین کو، لڑکیوں کو، کہ آپ کا سامان ہمارے پاس پہنچ گیا ہے لیکن آپ کو کوئی ٹیکس اس کے اوپر دینا ہوگا، تو اس ٹیکس کو ادا کر کے آپ اپنا سامان لے لیجیے۔ تو وہ لڑکیاں، ظاہر ہے کوئی بھی خاتون ہو، وہ کہتے ہیں بھائی 4-5 تولے اگر فرض کریں 15 لاکھ روپے کا زیور ہے، اور اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر 50,000 ٹیکس ہے، تو کوئی بندہ کہتا ہے چلو یار 50,000 روپے ٹیکس یہ دے دیتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے وہ 15-20 دن میں وہ ان کے ساتھ دوستی کر کے اتنا ٹرسٹ گین کر چکے ہوتے ہیں، تو وہ 50,000 بھجواتے ہیں۔ پھر 50,000 اس طرح کرتے کرتے کرتے کچھ رپورٹس ہیں کہ کچھ خواتین کے ساتھ تو یہ اسکیم ملینز میں بھی ہوا ہے۔ اب مجھے یہ چیز بار کیپ سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ اسکیم ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، تو پہلے 50,000 روپے میں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، دوسرے 50,000 روپے، تیسرے 50,000 روپے، لیکن اگر آپ 12 لاکھ روپے دے چکے ہیں اور آپ اس کو اسکیم کہہ رہے ہیں، تو یہ اسکیم کم ہے اور بے وقوفی زیادہ ہے۔ سبار کیف، اب کس طرح ہوا کس طرح نہیں ہوا مجھے نہیں پتا ہے، لیکن یہ میں صرف ایک پبلک سروس میسج کے طور پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو، کوئی شخص آپ سے کہے کہ بھائی ہم گفٹس بھیج رہے ہیں یا ہم بھیجنا چاہتے ہیں، تو اول تو دیکھیں، کوشش کیجیے کہ اس طرح کے معاملات سے بچیے۔ کوئی اگر ریئل بھی ہے تو ڈونٹ گو فار ایٹ، کوئی کیوں آپ کے لیے کرے گا؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا، انٹل انلیس آپ مطلب کچھ ایسے لارجر دین لائف پرسنالٹی ہیں کہ کوئی آپ کی محبت میں اس کا حد تک گرفتار ہو چکا ہے، ادروائز 13-14 دن کی دوستی میں کوئی کیوں آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرے گا؟ تو اول تو یہیں سے آپ کو سوچ لینا چاہیے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ انسان ہے، لالچ آ جاتی ہے اور پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ سو اور ایک بار جب آپ پیسے دے دیتے ہیں نا کسی کو، یاد رکھیے گا، اور خاص طور پہ یہ جو بینکنگ چینل ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم بینکنگ چینل سے پیسے بھیجیں گے، جیسے ایزی پیسہ ہو گیا، جیس کیش یا اس طرح کے دوسرے چینلز ہیں، اس سے پیسہ بھیجیں گے تو ہم ریکور کر سکتے ہیں۔ وہ ریکور نہیں ہوتے ہیں، وہ ثبوت تو ہے کہ آپ نے بھیجے ہیں، لیکن وہ اس چیز کا بھی ثبوت ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے بھیجے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ تو یہ اس چیز کا بھی ثبوت ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے پیسے اس کو بھیجے ہیں۔ اب آپ کے درمیان کیا گفتگو ہے کیا نہیں، اب یہ تو کسی ادارے کو تو نہیں پتا، لیکن بار کیف غور کیجیے گا، کبھی اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو تو سوچ لیجیے گا کہ اسکیم ہی ہو رہا ہے۔ سو ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، ٹائم کم ہے چونکہ ہم نے مین بات کے اوپر آنا ہے، مین گفتگو کرنی ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بڑے ہی دردناک اور بہت ہی دلوں کو مسمار کر دینا والا واقعہ تھا۔ میں بالکل سرگودا میں پیش آنے والا ایک کیس جس میں 7 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا، اور بڑی بے رحمی سے قتل کیا گیا، جو کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے، میں نے وہ پڑھی ہے۔ اس کے مطابق ظاہر ہے مجھے اب سینسٹائز نہیں کرنا ہے یا مجھے آپ لوگوں کو دکھی کر کے یا یو نو کوئی ٹی آر پیز والا معاملہ تو ہے نہیں، لیکن جو پوسٹ مارٹم کے مطابق بہت ہی اذیت سے اس بچی کو موت دی گئی ہے، جو کہ محض میرا خیال سے 7 یا 8 سال کی تھی۔ سو ابھی کچھ دن پہلے میں ایک جگہ پر بلایا گیا اور وہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی تھی۔ بدترین ہوتا ہے وہ شخص جو کہ اپنا ایجنڈا اس وقت لے آئے کہ جب ایز اے ہول انسانیت کی بات ہو رہی ہو، اور یہ چیز میں نے اکثر امام حسین علیہ السلام کی گفتگو جب ان کے اوپر ہوتی ہے تب بھی میں نے دیکھا ہے کہ بات ایز
हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हो रही है। देखें, आपका ताल्लुक किसी भी मकातबे फिक्र से है, आप देवबंद हैं, आप अहले हदीस हैं, आप अहले सुन्नत हैं, आप शिया हैं, आप कुछ भी हैं, आप मुसलमान हैं, ये जितने नाम मैंने लिए हैं सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, सब के सब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक भी हैं, उनके उम्मती भी हैं, ठीक है। और इन तमाम मकातब फिक्र में एक चीज मानी जाती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों के साथ जुल्म हुआ। ऐसा कोई नहीं है, मतलब कोई फिरका ये नहीं कहेगा कि भाई ये नहीं हुआ, सब मानते हैं कि हुआ, लेकिन अब फिर उसके ऊपर डॉक्ट्राइन या थ्योरी डिफरेंट है हर बंदे की, वो बात की बात है, लेकिन मानते सब हैं कि वाकया हुआ। तो इस वाक्य का हो जाना ही गिरिया करने के लिए बहुत है। अब गिरिया करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं, कोई पानी पिला रहा है उनकी याद में, कोई आंसू बहा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई रोजा रख रहा है। अब किसी को हक नहीं है कि वो ये कहे कि भाई इसका गिरिया ठीक है, इसका ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई उनकी याद में रोजा रख रहा है तो ये उसका गिरिया है, अगर कोई उनकी याद में नमाज पढ़ रहा है तो ये उनका गिरिया है, अगर कोई उनकी याद में पानी पिला रहा है किसी को तो ये उसका गिरिया है, अगर कोई उनकी याद में किसी को खाना खिला रहा है तो ये उसका गिरिया। तो हर शख्स का गिरिया जो है वो उसके जहन के या उसके मकातब फिक्र के मुताबिक होगा। मसला तब बनता है कि जब आप ये कहते हैं कि भाई मेरा गिरिया तो ठीक है लेकिन ये जो गिरिया कर रहा है ये गलत कर रहा है, तब फिर लड़ाई भी होती है, तब फिर इख्तलाफ भी पैदा होते हैं और तब फिर मामलात खराब होते हैं। तो इसी तरह अक्सर मैंने देखा है कि जब एज अ होल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फिक्र के ऊपर बात हो रही हो तो वो लेफ्ट राइट की चीजें ले आते हैं, ये देखें जी आप ये मातम के दौरान ये हो जाता है, कुछ माम शख्सियात के हवाले से ये गुफ्तगू हो जाती है, वो फिर उसको काउंटर नैरेटिव देते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की भी तो जब वो आए थे तो जो अजीज़ मिस्र की बीवी और उनकी दोस्तें थीं उनकी उंगलियां कट गई थी एंड ऑल दैट। वो ज़ाहिर है हर बंदे ने फिर अपना एक नैरेटिव सपोर्ट करना होता है, तो वो कतअन नज़र फिर वो जो मेन चीज़ है वो छुप जाती है। इसी तरह अभी जो मैंने कहा कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात हो रही थी तो वहाँ पर भी कुछ ख़वातीन मौजूद थीं जिनका एक अपना सो कॉल्ड एजेंडा है जो कि सिर्फ उन ख़वातीन के लिए वो रखती हैं जो कि उनकी सोच से मुताबिकत रखती हैं, औरत के लिए उनका एजेंडा नहीं है। देखें, कोई एजेंडा अगर औरत के लिए हो तो वो हर उस औरत के लिए है जिसको खुदा ने बतौर औरत बना के इस दुनिया में भेजा है। वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि भाई बच्चों के हकूक के लिए बात करनी है तो मैं कहूं कि सिर्फ इस्लामाबाद के बच्चों के लिए बात करनी है, अगर मैं बच्चों के हकूक के लिए बात कर रहा हूं तो फिर मुझे अंदरून सिंध अगर कोई बच्चा भूखा है तो मुझे उसकी भी बात करनी है, अगर कोई पेशावर में किसी को सेहत की सहूलत नहीं मिल रही तो मुझे उसकी भी बात करनी है, पंजाब में अगर कोई तालीम का मसला है तो मुझे उस पर भी बात करनी है, अगर बलूचिस्तान में कोई सिक्योरिटी का मसला है तो मुझे उस बच्चे की भी बात करनी है। तो आपको एज अ होल फिर हर बच्चे की बात करनी है, आपको हर बच्चे की जो राइट है उसका ख्याल होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मैं कहूँगी हाँ भाई जो मेरे शहर के बच्चे हैं बस उनके राइट्स हैं बाकी किसी का राइट नहीं है। सो हुआ कुछ यूं कि मुझसे पहले खातून थी वो गुफ्तगू कर गई और उनकी गुफ्तगू में सिवाय उन्होंने मर्द जात को मैं कहता हूं कि गालियां नहीं दी, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि गंदी गालियां नहीं दी, गालियां तो किसी हद तक उन्होंने दी और सामने बैठे हैं हम सब बैठे हैं, ठीक है। उन्होंने देखिए आपको डाइस पे बुलाया जा रहा है तो आप अपना मौकिफ दें, आपका मौके ऐसा होना चाहिए कि सामने बच्चे बैठे हैं, औरतें बैठे हैं, मर्द बैठे हैं, लोग बैठे हैं, फैमिलीज बैठी हैं, तो एटलीस्ट उनको पता चले कि यार आप एक अगर आपका नैरेटिव सख्त भी है तो कम से कम ऐसे पेश करेंगे अगले को समझ तो आए। बार कैफ अब उनकी खुशकिस्मती कही है या मेरी बदकिस्मती कही है जो भी है, उनके बाद मेरी बारी थी। तो जब वो स्टेज से उतर आई बड़ी एक जारहाना तकरीर करके 15-20 मिनट की, जो टॉपिक था ह्यूमन राइट उसके ऊपर तो उन्होंने शायद 2 मिनट भी बात नहीं की होगी, उनकी सारी गुफ्तगू जो है वो इस बेस के ऊपर रही कि मर्द ऐसे मर्द वैसे फला ऐसा फला, मतलब वो इतनी एक मैार से गिरी हुई गुफ्तगू थी कि मैं शायद उसको रिपीट भी नहीं कर सकता, कुजा ये कि मैं किसी औरत के हवाले से वैसी बात करूं। खैर जब वो उतरी स्टेज से डाइस पर मुझे बुलाया गया तो मैंने ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करते हुए बात ये की कि जो हमारे मौशरे में बहुत सारी एक बेरा रवि ख्वातीन के हवाले से पैदा हो रही है उसका जिम्मेदार भी मर्द है। अब जरा मेरे जुमले देखिएगा, मैं एज इट इज वो चीज आपके सामने रख रहा हूं, उसके बाद प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप जो भी उसका नतीजा निकलना चाहें वो आपका हक भी है, आपके शऊर के ऊपर मैं बात छोड़ के जाऊंगा। मैंने कहा कि जो हो रहा है, चाहे ये जो हमारे
सामने कुछ खबरें आती हैं, इसमें बहुत सारा हाथ मर्द का भी है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि ये जो सरगुता वाला वाक्या हुआ, घर में भाई मौजूद है, बाप मौजूद है, कोई मर्द मौजूद है, उसके होते हुए भी, चले ये तो एक ऐसा केस हुआ ना जो कि हो गया, आप कभी जरा नोट कीजिएगा, इमेजिन कीजिएगा, आप अपनी जिंदगियों में देखिएगा, क्या ऐसा नहीं होता कि घर में बड़ा भाई बैठा हुआ है, घर में अबू बैठे हुए हैं, मामू बैठे हुए हैं, चाचू बैठे हैं, या कोई भी मर्द बैठा हुआ है, और हम वैसे अपने घर की किसी बच्ची को कह देते हैं, 9, 10 साल, 11, 12 साल की बच्ची को, बेटा ये 100 रुपया पकड़ो और दूध लेकर आओ। क्या ऐसा नहीं हुआ कभी? एक दफा जरा सोचें कि आजकल परसों तरसों आपने कभी ये प्रैक्टिस होते अपने घर में या कहीं पर देखी है या नहीं देखी कि घर में मर्द मौजूद है। देखो मर्द नहीं है, सारे के सारे ऑफिस गए हुए हैं, स्कूल गए हैं, इमरजेंसी है, लाना है, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर में मौजूद हैं, बड़ा भाई है, मामू है, चाचू है, अबू है, लेकिन उसके होते हुए भी फिर भी बच्ची को भेजा जा रहा है तुम लेकर आओ। सो आई सेड कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का, कि हमारे मर्द जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अब हमारे आज के मुआशरे का जो मर्द है वो क्यों जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि वो भी चाहता है कि भाई ठीक है, अब ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, अगर इसको अंडरस्टैंडिंग का नाम देकर रिलैक्स जिंदगी गुजारनी है तो फिर ऐसे सही। हालांकि ये मुश्किल है ना, कि कोई मर्द अगर किसी औरत से ये कह रहा है कि भाई आप काम ना कीजिए, आप घर में मलका बन के रहिए, मैं बाहर झुलसती हुई गर्मी 45 डिग्री में जाता हूं कमाने के लिए, आप घर में, मैं आपको एसी दे रहा हूं, आप घर में एसी में रहिए, टीवी देखिए, खाना पकाइए, घर को साफ कीजिए, बच्चों का ख्याल रखिए, आप अपनी सल्तनत का ख्याल रखिए, मैं बाहर गुलामों की तरह कमाने जा रहा हूं, तो ये कहने के लिए बड़ी जुर्रत, बड़ा खुददारी चाहिए। लेकिन चूंकि अब वो मर्द के अंदर वो चीज नापैद होती जा रही है, तो कहते हैं चलो ऐसा करते हैं, इसको अंडरस्टैंडिंग का नाम देते हुए उसे कहते हैं हाँ ठीक है, तुमने जो करना है करो, तुमने जिस तरह मामला तुमने देखने, मैं तुम्हें सपोर्ट करके बहादुर बना रहा हूं। सुबार कैफ, वो जब मैंने इतनी सी बात की तो वही खवातीन खड़ी हो गई, लेकिन अब उनकी बदकिस्मती ये थी कि डाइस पर मैं था, अब कोई और शख्स होता तो शायद खामोश हो जाता, लेकिन मैंने भी बार कैफ, मेरी कभी हमेशा से, मैं खैर वो अभी बच्ची से भी बात कर रहा था कि आप यकीन कीजिए मेरी, कभी मर्द कोई मेरे मुकाबिल हो तो मैं किसी और लहजे में बात कर भी लेता हूँ, इवन कभी आपने ऑन एयर भी देखा होगा या ऑफ एयर भी, कभी खुदा ना करे ऐसा मामला हो कि आप देखें, लेकिन कभी मर्द मुकाबिल हो तो मैं उस तरह आंसर कर भी देता हूँ। खवातीन के साथ मैंने कभी नहीं किया, नेवर, इवन अगर कोई बहुत गलत बात भी किसी ने कर दी, मतलब कभी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह वाकया हुआ नहीं, आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी फेवरेट ऑफ फीमेल्स, लेकिन लेकिन कभी अगर ऐसा कोई आर्गुमेंट हुआ भी किसी पर्सपेक्टिव के ऊपर, तो मैंने कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया किसी फीमेल को। सो उसकी वजह यह है कि मेरी तरबियत में या मेरी, मुझे बनाने में मेरी आसपास की खवातीन का बहुत किरदार है, चाहे वो मेरी वालदा हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो मेरे प्रोड्यूसर्स हों, जितने भी लोग हैं मेरे आसपास, उनका बड़ा किरदार है खवातीन का मेरी ज़िंदगी में, मुझे बनाने में। अच्छा, सो खैर वो मैंने इतनी सी बात की कि बच्ची को आप क्यों भेज रहे हैं कि जब ये मर्दों का काम है कि घर के मामलात देखना, तो वो खवातीन एकदम खड़ी, उन्होंने कहा ये वो सोच है जो हमें तब्दील करनी है, आप बच्ची की आजादी के खिलाफ हैं। तो जब एक जुमला उन्होंने कहा और दूसरा जुमला कहा और तीसरा जुमला, फिर मैंने उनको कहने नहीं दिया, मैंने कहा एक्सक्यूज मी मैम, आप बोल चुकी हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ है जो रह गया है तो प्लीज आप मेरा टाइम भी लीजिए, डाइस पर आइए, हम सबको बताइए, हम दोबारा आपको सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन दो चीजें हो सकती हैं, या आप आ जाइए मैं बैठ जाता हूं, या मैं बोलता हूं और आप बैठ जाइए। तो इतनी देर में वो जितने आई रियली वांट टू अप्रिशिएट जो लोग वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने फौरन इंटरवीन किया, एक तो मतलब जो मैनेजमेंट थी उसने तो किया ही फटाफट, लेकिन जो लोग बैठे हुए थे वहां पर उन्होंने फटाफट इंटरवीन किया, और वो उनके इंटरवीन जिस तरह से उन्होंने किया, जो कुछ फैमिलीज वहां पर बैठी हुई थी उन्होंने जिस तरह इंटरवीन किया, तो शायद उस खातून को पता चल गया कि शायद ये चीज़ पसंद नहीं आई है वहां पर बैठे हुए लोगों को। मैं तो खैर बाद में कोई कुछ कहता, वहां पर बैठे हुए कुछ लोगों ने कहा कि मैम खुदा के लिए अब जरा बैठ जाएं, अब किसी और को भी बोलने दें, मतलब यू नो इस तरह के कुछ अल्फाज और इस तरह के, हालांकि यू नो मैंने थोड़ा सा माहौल को काम करने की कोशिश किया एंड ऑल दैट। सो फिर जब वो बैठ गई तो मैंने उनसे कहा कि आप बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ मैम मुझे ये बताइए कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि घर के जितने मामलात हैं जो बाहर से रिलेटेड हैं वो मर्द के जिम्मे हैं,
अगर वो बाहर से कुछ लाना है, बाहर कमा के लाना है, ठंड है, गर्मी है, आंधी है, बारिश है, तूफान है, ये घर के मर्द ने करने हैं। तो क्या मैं औरत को एक बेटर, एक बेहतरीन पोजीशन पे रख रहा हूं और मर्द को एक वल्नरेबल पोजीशन पे रख रहा हूं, या जो औरत है उसको वल्नरेबल या कमजोर पोजीशन पे रख रहा हूं, या मर्द को बेहतर पोजीशन पे रख रहा हूं? फॉर एग्जांपल, अगर मैं कह रहा हूं कि आंधी है, तूफान है, बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, जो भी है, औरत घर पे रहे, वो घर के मामला देखे, वो बच्चों का ख्याल रखे, वो अपने आप को संवारे, बनाए, अपनी स्किन केयर करे, टीवी देखे, हर चीज मामला करे। मर्द का काम है कि अगर एक दाना भी नहीं है घर में तो वो बाहर जाए, चाहे झुलसती हुई गर्मी हो, और वो लेकर आए। तो क्या मर्द को हम एक टफ पोजीशन में खड़ा कर रहे हैं या एक औरत को कर रहे हैं? मैंने कहा कि अगर आप हकूक की बात करना चाह रही हैं, फिर जाहिर है मैं उनसे डायरेक्ट मुखातिब हो गया। मैंने कहा अगर आप हकूक की बात करिए, अभी आपने तकरीबन 40 मिनट गुफ्तगू की, हालांकि जो मुझे बताया गया था हर स्पीकर के पास तकरीबन 20 से 25 मिनट थे, आपने 40 मिनट गुफ्तगू की, हमने आपकी औरत होने की वजह से ही उसको सुना। खैर, वो जब मैंने ये बात की तो फिर वो जो क्राउड था उसने क्लैप वगैरह शुरू कर दी। मैं फिर ये कह रहा हूँ, बाखुदा मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा कि मैं अपना ये जो गुफ्तगू करने का अंदाज है इसको इस्तेमाल करते हुए किसी को डीग्रेड करूं। मैंने कभी ये नहीं किया, उस टाइम पर भी मेरी ये सोच नहीं थी, लेकिन वो अब जुमले निकल रहे थे तो वो अब बैठ रहे थे उस तरह। मैंने कहा यकीन जानिए 25 मिनट हम सब स्पीकर्स के पास टाइम था, आपने 40 मिनट गुफ्तगू की, सिर्फ इस वजह से हमने सुना कि आप एक खातून हैं। आपको ये ना लगे कि हम आपको रोक रहे हैं या आपकी बात को सुना नहीं जा रहा है। आपने 40 मिनट की गुफ्तगू की, उसमें से आपने 35 मिनट सिर्फ और सिर्फ मर्दों को बुरा भला कहा, गाली निकाली। चले, इससे अगर आपकी तस्कीन भी हो गई, मैं अपने 25 मिनट इस बात पे इस्तेमाल करूंगा कि मैं ये चाहता हूं कि इस पे बात की जाए कि औरत को जहेज दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन उसको विरासत में हक जरूर दिया जाए। मैं अपने 25 मिनट इस बात पे सर्व करना चाहता हूं कि औरत को और किसी चीज का हक हो या ना हो, उसको शादी करने का हक अपनी मर्जी से होना चाहिए। कोई बंदा उस पर मुसल्लत ना करे कि तुम हमारी शादी फूफो के बेटे से होगी या मामू के बेटे से होगी। वो जहां शादी करना चाहती है, ये उसका हक होना चाहिए कि उसकी शादी वहां पर कराई जाए। मैंने कहा मैं अपने 25 मिनट इस चीज के ऊपर सर्व करना चाहता हूं कि मैं इस पर बात करूं कि जितना आप जोर बच्चे की तालीम पर लगाते हैं, उतना ही जोर आप अपनी बच्ची, अपनी बेटी की तालीम पर लगाएं। जितना पैसा, जितनी तवनाई, जितनी एनर्जी, जितनी सोच, जितनी जान आप अपने बच्चे के करियर के हवाले से मारते हैं, या आप अपने बच्चे के तालीम के हवाले से, या अपने बच्चे की फिटनेस के हवाले से, या अपने बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है उसके हवाले से, मोहब्बत के हवाले से आप करते हैं, उतना ही आप बच्ची के हवाले से भी करें। मैं अपने 25 मिनट इस पर लगाऊंगा। मैं इसको औरत का सही राइट मानता हूं। मैं इस तालीम के हवाले से, या अपने बच्चे की फिटनेस के हवाले से, या अपने बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है उसके हवाले से, मोहब्बत के हवाले से आप करते हैं, उतना ही आप बच्ची के हवाले से भी करें। मैं अपने 25 मिनट इस पे लगाऊंगा। मैं इसको

आपके पास गाड़ी है या आप घर पे मौजूद हैं, फ्री हैं। अगर फ्री नहीं है, देखें एक चीज याद रखिएगा, जब आप अंडरस्टैंडिंग के साथ जिंदगी गुजारते हैं फिर तो एक बात और है। मतलब अब फर्ज करें घर में कोई बंदा मौजूद ही नहीं है और आपको जाना पड़ गया, तो कितनी बार ये हो सकता है? महीने में एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, मिनिमाइज होगा ना ये चीज। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब खैर मैंने ये बात अपनी मुकम्मल की तो खातून दोबारा, खैर चूंकि भी आवाज़ नहीं आई है उनकी, और उनको लगा शायद कि अब बात करना बेकार है, तो खैर उन्होंने दोबारा गुफ्तगू नहीं की। और या शायद उनको अंदाज़ा नहीं था कि शायद मैं जिसको जिसकी बात काट रही हूँ, या यू नो वो शायद मुझसे इस तरह मुखातिब हो जाएगा। यकीन जा रही है मैं कभी नहीं होता, लेकिन दिस दिस इज़ नॉट समथिंग विच वी शुड टॉलरेट। उसकी वजह पता क्या है? देखें ये सोच, मैंने जब पहले भी कहा कि ये सोच जब सराइत करती है माशरे के अंदर, इस सोच ने हमें बाहिसते माशरा बड़ा नुकसान दिया है, बाहिसते कम्युनिटी हमने बड़ा नुकसान उठाया है इस चीज से। क्योंकि इस तरह की सोच जब माशरे का हिस्सा बनती है तो वो हर घर तक जाती है, क्योंकि हर घर ही माशरे का हिस्सा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सबसे बड़ी चीज है परवरिश, सबसे बड़ी चीज है परवरिश। क्यों? जनाबे सैयदा जैनब सलामुल्लाह अलैहा को क्या बकायदा बचपन से ये तरबियत दी गई थी कि करबला होगी, वहां पे आपके भाइयों को, बेटों को, भतीजों को शहीद कर दिया जाएगा, बीबियों को कैदी बना के ले जाया जाएगा, आपको यजीद जैसे मलाउन के दरबार में गुफ्तगू करनी पड़ेगी? मैंने आपसे पहले भी कहा कि आजकल मैं मदीना से मदीना तक की जो एक सीरत है वो पढ़ रहा हूँ, जिसमें वो आहले बैत का काफिला जो कि करबला की तरफ रवाना हुआ, मदीना से वापस मदीना आने तक जो कि काफिला रह गया और फिर कैद से आज़ाद होकर मदीना वापस आया, उसके सारे मैं उस सीरत को आजकल स्टडी कर रहा हूँ। मैं आपको एक एक मिसाल देता हूँ, खुदा करे ये जितनी खवातीन सुन रही हैं कहीं किसी के जहन में ये बात आ सके, और फिर उसके बाद मैं उस हदीस की तरफ आऊंगा। जनाबे सैयदा जैनब सलामुल्लाह अलैहा जब दरबार में खड़ी हुई तो उस यजीद मलाउन ने कहा कि ये इसको इस बात का गुस्सा है कि मैंने इसके भाई मारे हैं, इसको इस बात का गुस्सा है कि मैंने इसके बेटे मारे हैं, इसको इस बात का रंज है कि मैंने इसके भतीजे मारे हैं। तो जनाबे सैयदा का आप जवाब सुनिएगा, खुदा करे ये जवाब जो ताकत रखता है उसी ताकत के साथ ये आपके दिल और दिमाग पे हिट करे, आपको समझ में आए कि मैं किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। जनाबे सैयदा ने कहा, भाइयों का जाना एक तरफ, भतीजों का जाना एक तरफ, अली अकबर का जाना एक तरफ, अब मैं क्या मसाइब पढ़ूं, कहां तक आप सुनेंगे, कहां तक मैं सुनाऊं, मैं अपने मौजू से हट जाऊंगा। अदरवाइज मैं आपको बताता कि जनाबे अली अकबर का जाना बीबी के लिए मसाइब ये कितना बड़ा है, जिसके हवाले से बीबी ने कहा कि पढ़ने वाले को चाहिए कि ना पढ़े अली अकबर के मसाइब, क्योंकि अगर सुनने वाला हाय ना करे तो दुख मुझे होता है। बार कैफ, अली अकबर का जाना है एक तरफ, जनाबे कासिम का जाना है एक तरफ, हजरत अब्बास का जाना है एक तरफ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जाना है एक तरफ, जनाबे अली असगर का जाना है एक तरफ, जनाबे जॉन का जाना है एक तरफ, हबीब इब्ने मजाहिर का जाना है एक तरफ, तमाम असहाब का जाना एक तरफ। बीबी ने फरमाया, मुझे रंज इस बात का है कि मुझे तेरे से बात करनी पड़ रही है। उफ। बीबी ने कहा कि भाइयों का जाना एक तरफ, भतीजों का जाना एक तरफ, बेटों का जाना एक तरफ। बीबी के दो बेटे, दो सगे बेटे बीबी के शहीद हुए हैं करबला में, ओनो ओनो मोहम्मद, दो सगे बेटे। बार कैफ, बीबी ने कहा कि सब दुख एक तरफ और दुख, लेकिन मुझे अभी इस बात का है कि मुझे तुझ जैसे से बात करनी पड़ रही है। लेकिन बीबी ने की ना बात जो एक हक की खिताबत थी, जब बोली बीबी, अब जरा बीबी की सीरत पढ़िए। कभी यही तो मसला है, हमने हर चीज पढ़ ली, अपने हीरोज नहीं पढ़े, और गलती आप लोगों की भी नहीं है, जिनको निसाबों के अंदर डालनी चाहिए थी उन्होंने निसाब के अंदर भी नहीं डाली है, निसाब के अंदर भी ये चीजें, ये तो हमें निसाबों में पढ़ाना चाहिए था। वो बीबी जो अपने वालिद से, कैसे वालिद से, अली जैसे बाप से, जिसके शराफत की गवाही सारा जमाना देता है, अपने वालिद, अपने सगे वालिद इमाम अली इब्ने अबी तालिब से भी
जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ी कम

बिल्कुल, तकरीबन सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये पूछा गया कि सबसे ज़्यादा हक मर्द पर किसका है, तो कहा तुम्हारी वालदा का हक है। और जब औरत से पूछा गया, औरत के हवाले से पूछा गया, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि औरत पर सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का है। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, अब चंद चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब के लिए चीज़ें उठाई गई। मैंने शायद पहले भी ये बात कही, अभी कुछ दिन पहले की बात है। आई वाज सिटिंग समवेयर, तो एक यंग सी बच्ची थी, वो बात कर, मैं एक इवेंट पे था, तो वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर थी वहाँ पे, तो आपस में बात कर रही थी कि भाई मैंने तो ये पढ़ा है इस्लाम में, मुझ पे कोई फ़र्ज़ नहीं है कि मैं अपनी सास को रोटी बना के दूँ, या मैं अपनी सास की खिदमत करूँ, या मैं अपने ससुर की खिदमत करूँ, मेरे पे इस्लाम ने ये लागू नहीं किया। तो मैं अब पास खड़ा था, तो मैंने कहा बेटा आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं कि इस्लाम ने आप पे ज़बरदस्ती नहीं किया, आप पे लागू नहीं है। लागू से मुराद है कि आपसे सवाल नहीं होना है, आपसे ये सवाल नहीं होना है कि आपने सास को रोटी दी है कि नहीं दी है, ये आपके शौहर से होना है कि उसने अपनी माँ को रोटी दी है या नहीं दी है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप अपने शौहर की माँ का ख्याल नहीं रखती, फर्ज करें, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका शौहर आपकी वालदा की इज्जत करेगा? कभी आपने इस पर्सपेक्टिव से सोचा है इस चीज़ को? मतलब आप अगर कहें कि मैं तुम्हारी माँ का ख्याल नहीं रखती, वो कहे कि भाई ठीक है मैं तुम्हारी माँ की इज्जत नहीं करता, तो फिर हम किस तरह के माशरे को परवान चढ़ाएंगे? कुछ चीजें आप आउट ऑफ लव करते हैं, आपके ऊपर अगर वो फोर्स नहीं भी किया गया इवन बाय योर रिलीजन, तो आप आउट ऑफ लव करते हैं वो चीजें, मोहब्बत से करते हैं वो चीजें, ताकि एक माशरा मोहब्बत पे कायम रहे। आप इमेजिन करें ना, फर्ज करें आप कहें जी मेरा तो काम नहीं है कि मैं तुम्हारी वालदा की इज्जत करूं, वो आगे से तुम्हारा मतलब खामद आपको कहते ठीक है बस मेरा अभी पर अग्नि कि मैं तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करूँ, तो फिर कैसे माशरे में आप रहेंगे कि जहाँ पे एक दूसरे के वालदैन की इज्जत ही नहीं हो रही? आप इज्जत करेंगी, वो इज्जत करेगा, इस तरह माशरा परवान चढ़ेगा जिसमें एक दूसरे के वालदैन की इज्जत हो रही होगी। अच्छा जी, खैर, सो जैसा मैंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बार ये इरशाद फरमाया कि तुम्हारी माँ का हक तुम पे। अब याद रखिएगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम इतना कीमती है कि आप सोच नहीं सकते। वजह बता रहा हूं, अरसा उनके पास 23 साल का है, जाहिर है नबूवत के बाद जो मामलात हैं, हम भी जो मामलात उनके जिंदगी में लेके चलते हैं नबूवत के बाद से लेके चलते हैं ना, ये याद रखिएगा, हम उनके जो मामला 40 से लेकर 63 साल तक का जो दुरानिया है, क्योंकि उसी में कुरान पाक भी उनके ऊपर नाजिल हुआ, उसी में खुदा ताला ने कलाम किया, उसी दौरान की हदीसें भी हम जो है वो शामिल करते हैं। 23 साल का अरसा है और पैगाम उन्होंने आपको देना है क्यामत तक का। मैं बड़ा अब यहां से मैं आहिस्ता आहिस्ता सफर करूंगा ताकि जो छोटे छोटे बच्चे मुझे प्यारे प्यारे सुन रहे हैं वो समझ जाएं इस चीज को, और जो बड़े सुन रहे हैं वो भी इस चीज को अंडरस्टैंड करें। तो हम स्लो स्लो जाएंगे, रिपीट भी करूंगा चीजों का। आई नो के टाइम हो गया 10-15 मिनट, आप लोग मैं बल्कि पूछ लूं मैं आपसे, यकीन जाने मैं आपके ऊपर वो जहमत नहीं बनना चाहता गुफ्तगु, नहीं तो हम इसको पोस्टपोन कर सकते हैं अगले उस पर। अगर पॉसिबल है तो 15 से 20-25 मिनट लगेंगे मैं जिस अंदाज में जिस आहिस्तगी के साथ गुफ्तगु ये करूंगा।

खैर जब ये जुमला स्पॉन्टेनियस मैंने उनके सामने कहा तो बड़ी देर तक वो जो है बड़े मसरूर हुए इस जुमले से, बल्कि वो थोड़ी देर बाद एक और दोस्त उनके आया, उनका यार मैंने इनके सामने ये बात कही है तो इनका ये जुमला था जरा बताइए दोबारा। मैं नहीं जानता ये जुमला अब तक उस तरह पहुंचा नहीं पहुंचा, मेरे बेरब्त अल्फाज ने वो मयार कायम कर सका आपके सामने या नहीं कर सका, लेकिन शायद इसीलिए फिर जरूरी है कि देखा जाए कि शरीके हयात विलायत अली में उसका दिल धड़कता है कि नहीं, ताकि बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मानूस हो जाए इस सदा के साथ।

जुम्मे के जुम्मे बाहर निकला तो दुकानदारों ने सौदा देना भूल जाना, गाकों को कहना कहीं और से ले ले, हुसैन के बेटे अली अकबर ने कोई नित नित रोज आना है बाजार में। यही वजह है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रुखसत किया जनाबे अली अकबर को, तो आसमान की तरफ देखकर कहा, या खुदा तू गवाह रहना कि अब मैदान में वो शाह सवार जा रहा है जो गुफ्तार में, किरदार में, मुशाबत में तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम में से सबसे ज़्यादा मुशाबत रखता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचे, फल बरछी का जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम के सीने में मौजूद। जनाब ने बरछी निकालने की कोशिश की, कहा, बाबा निकाल, आप जिस तरह रहे हैं निकलनी इस तरह नहीं है। कहा, अकबर दर्द हो रही है। कहा, बाबा दर्द नहीं हो रही, ताना दिया है उसकी तकलीफ है। कहा, क्या ताना दिया है? कहा कि इन्होंने बरछी लगा कर मेरे कान में कहा कि सुना है तेरा बाप बड़ा साबिर है, अब देखते हैं तेरे सीने से बरछी कैसे निकालता है। बाबा हाथ उठा लीजिए, घुटने मेरे सीने पे रख लीजिए और फिर ताकत से इस बरछी को निकालिए। शाह छिकन लगा फल बरछी दा, शाह छिकन लगा फल बरछी दा, हुई कुल मुरसल हैराने। शाह छिकन लगा फल बरछी दा, हुई कुल मुरसल हैराने। शाह छिकन लगा फल बरछी दा। शाह छिकन लगा फल बरछी दा, हुई कुल मुरसल हैराने। वदा वलकल मौत हुसैन नू आखे, हो तेरे अकबर दार माने। ओ मां पिउ थी बर्बाद वेंदे, जिदा मर पवे पुत्र जवाने। जिदी मौत ते खर्च होवे, ओदी शादी दा सामाने। शाह छिकण लगा फल बरछी दा, होई कुल मुरसल हैराने। खड़ा मलकल मौत हुसैन नू आखे, ओ तेरे अकबर दार माने। ओ तेरे अकबर दार माने, ओ तेरे अकबर दार माने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।

ये नूर है तू खाक है तेरी औकात क्या। यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। यजीद तेरा और मेरा रोल मॉडल ना बने। अब इससे ज्यादा आसान मैं क्या समझा सकता हूँ कि हुसैन ने इनकार क्यों किया। यजीद जैसा तेरा और मेरा रोल मॉडल ना बने। अगर तो देखो आप एग्री हो गए भाई बन भी जाता खैर है कोई मसला नहीं है फिर तो ठीक है फिर तो आप कहें फिर तो आपका हक बनता है कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया बस ठीक है फिर तो। लेकिन याद रखो दिल को गवाह बनाओ अगर ये कबूल नहीं है यजीद जैसा रोल मॉडल कबूल नहीं है तो फिर रोज उठो और कहो शुक्रिया या हुसैन अलैहिस्सलाम।

हाय हाय खुदा की मैं तलाश में भटक रहा था दर बदर। परवरिश की बात हो रही थी ना, परवरिश परवरिश परवरिश याद रखना, फिर हर चीज सीख जाता है बच्चा अगर परवरिश ठीक हुई हो उसकी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दास्तान तो असरे अशूर खत्म हो गई थी ना, करबला जिंदा रखी है, बचाई है जनाबे सैयदा जैनब ने, उस शख्सियत ने जिसने अपने अली जैसे बाप के साथ भी गुफ्तगू नहीं की जिंदगी में इतनी, यजीद के दरबार में खड़े होके ललकारा उसको, यजीद मत समझ कि हम मजबूर थे, हम खुदा की रजा में राजी थे। दुख इस बात का है कि तुझ जैसे से बात करनी पड़ रही है। हाय हाय हाय हाय, कहां से लाओगे ये ग्रेस, कहां से लाओगे ये कॉन्फिडेंस, ये जुर्रत, मुझे बता दो। मैं अपने घर की खवातीन को उन यूनिवर्सिटी में, उन ऑफिसेज में, उन जगहों में दाखला करवा दूं। परवरिश परवरिश परवरिश।

0: सवाल बैत यजीद ना उठेगा अब हश्र तक। जब भी मुकाबला हो दुनिया में किसी जुल्म के साथ, टट जाओ हुसैन के इनकार की तरह।
1: आए हाय आए आए आए
0: कह दो आंखों में आंखें डाल के मुंह पे जवाब दे मारो उसके, कहो मेरी इनकार को हुसैन का इनकार समझ, और फिर पीछे ना हटो। और एक और बात, कभी ये ऐसे वैसो ऐरे गैरों को मत मिलाया करो कि ये हुसैन की तरह ये करबला, अरे नहीं ये खुदा के लिए मत किया करो, ये हुसैन अलैह सलाम ही कर सकते थे जो वो कर गए। जब भी सामना हो किसी जालिम से, डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह।

सुनना जरा ये स्टैंजा सुनना, फिर बात करता हूँ मैं, सुनना जरा इसको। थक तो नहीं गए, इम्तिहान ना तेरा है ना मेरा है, तेरा पढ़ना आसान तेरा सुनना आसान, इम्तिहान उसका है जो अपने अहलो आयाल के साथ रिश्तो बयाबा में मौजूद रहा। बैठे यजीद अब ना उठेगा हश्र तक।

मैदान दश्त करबला शिकार तेरा हुरमला, कान में असगर की बता दिया हुसैन ने। इसका एक और स्टैंजा है कुछ इस तरह के, अली का ये भी शेर है, ये तीर से डरेगा क्या, अली का ये भी शेर है, ये तीर से डरेगा क्या, हाथ में उठा दिखा दिया।

नहीं जानता कितना गिरिया करोगे इस जुमले के ऊपर। इस जुमले के ऊपर जमीन आसमान गिरिया करते रहे, जुमले का हक अदा नहीं होता। सबसे छोटा शहीद है अली असगर करबला का। पढ़ दूं जुमला, सुन लोगे जुमला। सबसे छोटा शहीद है करबला का अली असगर, लेकिन तीर सबसे भारी मारा गया। बड़ा अमीर है भाई वो बंदा, बड़ा दुनियादार है वो बंदा जिसकी हाय नहीं निकली। बड़ा अमीर है वो बंदा जिसकी हाय नहीं निकली।

उर्मिला ने जब कमान में तीर लगाया, इसने पहला तीर छोड़ा, निशाना खता हुआ, दूसरा तीर छोड़ा, निशाना खता हुआ। शमर ने कहा, उर्मिला तू तो बहुत बड़ा निशानेबाज है, तेरा निशाना अरब में मशहूर है कि तू बहुत बड़ा निशानेबाज है, तेरा तीर क्यों चौंक रहा है। कहा, जालिम देख, जैसे जैसे मैं तीर खींचता हूं, असगर की माँ है जो उठती है बैठती है, उठती है बैठती है।

0: सब्र दा सर से चिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। क्या कहूँ शेर मेरे ये मुसलमान सारे लेके हमको शहर दर शहर फिरे खलकते कूफा कभी खलकते शाम कभी बारहा हम पे हंसी तू ना आया गाजी
1: बना दिया हुसैन ने
0: सवाल बैत यजीद उठेगा ना अब हश्र तक। हुसैन आप नहीं रहे जालिमों का डर नहीं रहा, हुसैन आप नहीं रहे आपका घर नहीं रहा, मगर आपके बाद जालिमों का डर नहीं रहा।

ऐसे चंद लम्हात के बाद सदा आएगी अल्लाह अकबर, जरूर उस सदा का जवाब दीजिएगा, जरूर सजदाए शुक्र भी अदा कीजिएगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हुसैन जैसा इमाम दिया है। सिर्फ 5 मिनट और हैं, बस आपकी जहमतें तमाम। मैं चूंकि आपके नाम शामिल नहीं कर सका, बस जल्दी से आपके नाम शामिल करके उसके बाद आपसे इजाजत लेता हूं। अगर आप मुझे इंस्टा पे ज्वाइन करना चाहें तो मेरा नाम ज़िशान नासिर है, जो आपके मैसेजेस वहां पे ऑलरेडी हैं, मैं उनको शामिल कर रहा हूं। ZEESHANNASIR26 ज़िशान नासिर 26 ZEESHANNASIR26 ज़िशान नासिर 26 वहां से इंस्टाग्राम से आप लोगों के मैसेजेस बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ।

हमजा अली हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमजा अली, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। किंजा हमारे साथ हैं, मानी हमारे साथ हैं, लाइबा मैसेज कर रही हैं, फरवा रुबाब हमारे साथ हैं, मरियम हमारे साथ हैं, आयशा हमें सुन रही हैं, किरण हमारे साथ मौजूद हैं, तूबा चौधरी हमारे साथ हैं, इकरा खान हमारे साथ हैं, फरजीन हमारे साथ हैं, बानो हमारे साथ हैं, बिनते हवा हैं, निमो हैं, बासी तैयबा हैं, नादिया अहमद हैं, गुल आफरीन खान हैं, मानूर फातमा हमारे साथ मौजूद हैं, अनम परवेज़ हैं, मोहम्मद मुनीब हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं सलामत रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ यमुना हमारे साथ मौजूद हैं, रोहान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं मौला सलामत रखे आपको, आप प्लीज़ मेरे लिए, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि दुआ किया कीजिए, अल्लाह ताला बस हम सबको सलामत रखे, मेरे लिए बहुत खसूसी दुआएँ किया कीजिए। रानी ज़िशानियन हमारे साथ मौजूद हैं, मरियम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन जी, अल्लाह ताला हम सबको तालीमात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समझने की तौफीक अता फरमाए। रानी ज़िशानियन हमारे साथ हैं, हुरिया मलिक हमारे साथ हैं, ऐमन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ साथ इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। आगे बढ़ते हैं, तूबा मलिक हमारे साथ हैं और मरियम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, मोहसिन ज़िशानियन हमारे साथ हैं, उनके साथ साथ ग़ुलाम मौला अली हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमजा अली हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं माँ हुसैन की राज़ी हूँ आप पर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और चूँकि अब फज्र करीब है और कायनात के बादशाह की सदा आपसे चंद लम्हात के बाद आएगी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कोशिश कीजिएगा जहाँ इतना जाग लिया है वहाँ पर 15-20 मिनट और जाग कर नमाज फ़ज्र अदा करके सोइएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि नमाज फ़ज्र अदा करने के बाद, एक सजदा शुक्राने का अदा करने के बाद, खुदा ताला से जब आप दुआ मांगें तो कहिएगा या अल्लाह शुक्र है मेरे अल्लाह आपका कि आपने हमें हुसैन जैसा इमाम दिया जिसने सब कुछ लुटा दिया लेकिन यजीद को हमारा रोल मॉडल बनने नहीं दिया। अल्लाहुम्म सल्ली अला सैयदना मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरा नाम ज़िशान नासिर है, मैं प्रोग्राम करता हूँ हर जुमे रात की रात 12 से 2। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाकर खुदा से रोकर मांगना पड़े तो ज़रूर मांगिए, खुश नसीब है वो आँख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद ना यार दामन दुहा जहाँ ना दाओ साडा दामन, वो दामन अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। दुनिया और आखरत में वो हमारे ज़ामिन है तो उनके दामन को कभी मत छोड़िए। आपका फ़ीडबैक बहुत ज़्यादा मेरे लिए एक ऑक्सीजन का काम करता है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, दुआएं भेजिएगा। ज़िशान नासिर लिखेंगे मैं आपको मिल जाऊंगा, फेसबुक के ऊपर भी ज़िशान नासिर 26 यानी कि ZEESHANNASIR26 और इंस्टाग्राम पे भी ZEESHANNASIR26। इंस्टा पे मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, एक्टिविटीज़ आपको अपनी सराउंडिंग की दिखाता रहता हूँ, शायद ईजी है, फ्रेंडली यूज़र है शायद इसलिए। खैर अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, जिथा पैर होवे उथा ही खैर होवे, कुल आलम दी खैर उना दे सदके साड़ी भी खैर, हक मौजूद सदा सदा सदा मौजूद, अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह हक, जिंदगी ने सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ज़िशान नासिर जा रहा है, तुम्हारा पुकी जा रहा है, ज़िशान नासिर साइंस आउट, टिल देन नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा हमेशा ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद, और शुक्रिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम।

0: الوالد.
1: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك،

أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد.